0: ଆକାଶବାଣୀ ଭବାନୀପାଟଣା ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା କଷ୍ଟ ମଣିଷକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ, କଷ୍ଟ ମଣିଷକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରେ। ପ୍ରତିଟି କଷ୍ଟର ଅଭିଜ୍ଞତା ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଶିକ୍ଷା। ଆକାଶବାଣୀ ଭବାନୀପାଟଣା, ସମୟ ସକାଳେ 6ଟା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରସାରଣ ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ଇଂରାଜୀରେ ସମ୍ବାଦ ରିଲେ କରି ଶୁଣାଉଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज फ्रांस के एवियों पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर मजबूत करने पर चर्चा होगी। सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री कैनेडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इसके बाद वे राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित रात्रि भोज में शामिल होंगे। फ्रांस के एवियों शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों से निपटने के लिए मिलकर काम करने के विषय में रात्रि भोज का आयोजन किया। 3 दिन के सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो की वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है।
2: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
1: स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए स्लोवाकिया की सरकार और जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता का सम्मान है। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की आशा बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान लगभग 4 महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमत हो गए हैं। दोनों देशों ने समझौते पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षर होने की पुष्टि की है, जबकि औपचारिक हस्ताक्षर समारोह शुक्रवार को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में होगा। समझौते के तहत होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने, समुद्री यातायात को बहाल करने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम सहित अन्य दो पर 60 दिन की वार्ता शुरू करने का रास्ता साफ होने की उम्मीद है। संघ लोक सेवा आयोग ने इस वर्ष की सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिया है। इस वर्ष लगभग 1000 रिक्तियों के लिए 13000 से अधिक उम्मीदवारों का चयन सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए किया गया है। उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in पर परिणाम देख सकते हैं। अंक, कट ऑफ और उत्तर कुंजी अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद वेबसाइट पर जारी की जाएगी।

0: फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर करते हुए काबो वर्डे की टीम ने प्रबल दावेदार स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोक दिया। पहली बार विश्व कप खेल रही काबो वर्डे के गोलकीपर वोजिन्हा ने शानदार खेल दिखाया और स्पेन को गोल करने का कोई अवसर नहीं दिया। काबो वर्डे करीब 5 लाख आबादी वाला छोटा सा द्वीपीय देश है। इस परिणाम को टूर्नामेंट में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। उधर दांबुला में एक दिवसीय क्रिकेट की त्रिकोणीय श्रृंखला के रोमांचक मुकाबले में श्रीलंका ए ने भारत ए को सुपर ओवर में 7 रन से हरा दिया। भारत ए ने विपराज निगम और सूर्यांश शेडगे के अर्धशतकों की मदद से 265 रन बनाए। श्रीलंका ए ने भी 50 ओवर में 265 रन बनाए। सुपर ओवर में श्रीलंका ए ने 16 रन बनाए जबकि भारत ए 9 रन ही बना सका। अब फाइनल में पहुंचने के लिए भारत ए को बुधवार को अफगानिस्तान ए पर जीत दर्ज करनी होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय सुभद्रा रामचंद्रन। Prime Minister Narendra Modi will arrive in Evian, France today on a 2-day visit to participate in the G7 summit in the third leg of his 2-nation visit. Upon arrival, French President Emmanuel Macron will formally welcome the Prime Minister. Mr. Modi will then participate in a working session of the summit on the theme Forging New Partnerships and Rebuilding International Solidarity, along with leaders of G7 countries, partner countries, and representatives of the World Bank and the African Development Bank. On the sidelines of the meeting, the Prime Minister is also scheduled to hold bilateral meetings with the Prime Minister of Canada, Mark Carney, Prime Minister of United Kingdom Keir Starmer and UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Later, he will attend a gala dinner hosted by French President Emmanuel Macron. Prime Minister Narendra Modi is visiting the French city at the invitation of French President Emmanuel Macron in what is expected to be a highly productive and wide-ranging visit. Notably, this marks India's 13th participation at the G7 summit and the Prime Minister's 7th consecutive participation. India's regular participation at the G7 summit reflects the increasing recognition of New Delhi's role and contributions in addressing global challenges related to peace, security, development and environmental sustainability. A report.
2: India's strategic importance for the G7 is increasingly being reflected in concrete economic and technology partnerships. This is evident from the recently concluded India-EU trade agreement as well as initiatives such as Bharat Innovates in Nice and India's role as the official AI partner country at upcoming VivaTech in Paris. These developments underline how G7 countries are looking at India not only as a major market but also as a trusted partner in technology, innovation, manufacturing and resilient supply chains. Significantly, many of the priorities identified by the French G7 presidency, including reducing imbalance, international partnerships and artificial intelligence, closely align with India's strengths and interests. Ankit Kumar, Akashwani News, Evian, France.
1: Earlier yesterday, India and Slovakia elevated their ties to a comprehensive partnership. The two sides also linked 11 agreements to boost cooperation in key areas including labour migration, digital technology and defence, following talks between Prime Minister Narendra Modi and his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava. Addressing a joint press conference, Mr. Modi said, elevation of ties symbolises shared beliefs, priorities and future.
3: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। यह हमारे साझा विश्वास, साझा प्राथमिकताओं और साझा भविष्य का प्रतीक है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
1: President of Slovakia, Peter Pellegrini, has conferred Slovakia's highest state honour, the Order of the White Double Cross First Class, upon Prime Minister Narendra Modi. Prime Minister expressed his heartfelt gratitude to the President, the government and the people of Slovakia.

सुनतले अति बड़े जगन्नाथ दास विरचित श्रीमद् भागवत आकाशवाणी भवानी पटना आमर परवर्ती प्रसारण संबलपुरी आंचलिक संवाद आकाशवाणी संबलपुर केन्द्र और पर शुणे संस्कृत संवाद आकाशवाणी दिल्ली केन्द्र।

प्रेमा योजना थी सफाई कर्मचारी मान सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा के बरकस करवा लगी राज्य सरकार संकल्पबद्ध आन बोली विभागीय मंत्री डॉक्टर कृष्णचंद्र महापात्र कहिछन ई श्रेणी कर्मचारी मान लगी कल्याणकारी सेवा अभियोग निराकरण और सूचना सहज सहजती उपलब्ध करवा लगी गरिमा हेल्पलाइन नंबर 14420 कार्यक्षम अच्छे ओडिशार डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीपनु गोलाकेल प्रतिरक्षा गवेषणा और विकास संगठन डीआरडीओ तरफ लॉन्ग रेंज अटैक क्रूज मिसाइल रो सफल परीक्षण करा जाइछे पूरापूरी स्वदेशी ज्ञान कौशल तैयार ई मिसाइल देशर प्रतिरक्षा क्षेत्र थी बहुत गुरुत्वपूर्ण भूमिका नेबा बोली डीआरडीओ तरफ सूचना दिया जाइछे ओडिशार गणपर्व रज पश्चिम ओडिशार लोकमानंकु भिल आकर्षित करुछि राज्यर समुद्र खणि इलाकान ई पर्व घरे घरे पालन करजाउथवार बेले ई इलाकान गला केते बछर हेला रज उत्सव के सरकारी स्तरथि संबलपुर पांथ निवासन आयोजन करजाउछि रज पर्व थी गलाकाल रज संक्रांति करजाइछि घरे घरे पिठापना तयार संगे टुकेल छुआ माने रज दुली खेलिछन रज पर्व तीन नंबर दिने आजभूमि दहन हेबा सेथि लागि तीन दिन जमिके जूता कुड़ा नाइ करन आयबाकाल बसुमती स्नान पालन सहित रज पर्व शेष होगा संबलपुर शीतलष्ठी जात्रा अवसर झाड़ुआपड़ार श्री लोकनाथ बाबा आर मुदीपड़ार श्री जागेश्वर बाबा आउ बड़बजार शीतलेश्वर बाबा सहित अलग शीतलष्ठी जात्रा कमिटी तरफ पतरपेड़ी नीति आयोज करा इतार उतरु आयबाकाल कमिटी मानक देव निमंत्रण कार्यक्रम रही नंदपड़ार बम्बराड बालुंकेश्वर बाबा बिहाती जोग देवार लगी गलाकाल राति सहर दे देवता मानक न्यूता देवार लगी नर्सिंग न्यूता हो जाए बालीबंधा सोमनाथ मंदिर पतरपेणी जात्रा भिल गलाकाल शेष हो शीतलष्ठी जात्रा समय थी जबर भीड़ के नजर थी रखिकी पुलिस प्रशासन तरफ व्यापक प्रस्तुति कराई लाख लाख श्रद्धालु समागम के अयतका सुरक्षित करवा लगी आरक्षी अधीक्षक मुकेश भामू निजे भिन भिन पड़ा बुलिकी स्थित समीक्षा कर शीतलष्ठी समय थी 80 प्लाटून पुलिस फोर्स सुरक्षा दायित्व थी रहा इतार छड़ा ट्राफिक व्यवस्था के भी श्रृंखलित करवा लगी सहर 5 जगान पार्किंग व्यवस्था कर पाणीपाग दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु राज्यर समुद्र खणी जिला मान के पहुंची आयबा 3-4 भितर मौसुमी राज्यर अलगा जगह मान के पहुंचा बोली पाणीपाग विभाग तरफ अनुमान करा जाइछे ई हप्ता शेष तक कालबैशाखी प्रभाव रहबा आयबा 24 घंटा भितर संबलपुर सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा बरगढ़ देवगढ़ अनुगुल ढेंकानाल केन्दुझर मयूरभंज और बालेश्वर जिलान धुकागड्डी और बिजली मारिकी वर्षा हेबार संभावना अच्छे पाणीपाग केन्द्र तरफ सतर्क सूचना जारी करा जाइछे एचनेट आंचलिक खबर इन शेष होगा आरबलर आंचलिक खबर सुनिपर्वे राति 7:02 थी जुहार।

0: आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। भारत स्लोवाकिया देशयोः सम्बन्धः समग्र सहभागित्वेन संवर्धितः अस्ति। ब्रातिस्लावा नगरे प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना तस्य स्लोवाकिया समकक्षीयेण रॉबर्ट फिको इत्यनेन सह वार्तालापस्य अनन्तरं श्रम प्रवास डिजिटल तन्त्रज्ञान रक्षादिषु प्रमुखेषु क्षेत्रेषु सहकारं वर्धयितुं उभौ पक्षौ समग्र एकादश सन्धिपत्रेषु हस्ताक्षरितवन्तौ। पश्चात् संयुक्तवार्ताहरसम्मेलनं सम्बोधयन् श्रीमोदी अवदत् यत् सम्बन्धानाम् उन्नतिः सह विश्वासानां प्राथमिकतानां भविष्यस्य च प्रतीकः अस्ति। कस्यापि भारतीयप्रधानमन्त्रिणः यूरोपीयराष्ट्रस्य प्रथमायां यात्रायां श्रीमोदी अवदत् यत् उभौ देशौ रक्षाक्षेत्रे सन्धिपत्रे हस्ताक्षरं कृतवन्तौ।
1: AI का भविष्य केवल इनोवेशन से नहीं बल्कि ट्रस्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ह्यूमन डिग्निटी पर आधारित होना चाहिए। रक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास और स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस का प्रमाण है। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में हमने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया। इससे ज्वाइंट डेवलपमेंट, ज्वाइंट प्रोडक्शन और डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी।
0: स्लोवाकिया देशस्य राष्ट्रपतिना पीटर पेलेग्रेनी इत्यनेन स्लोवाकिया देशस्य सर्वोच्चं प्रशासकीय सम्मानं द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास इति प्रधानमन्त्रिणं श्रीमोदिनं प्रदत्तम्। श्रीमोदी स्लोवाकिया देशस्य राष्ट्रपत्ये सर्वकाराय नागरिकेभ्यश्च विशिष्ट सम्मानाय कृतज्ञतां प्रकटितवान्। द्वयोः राष्ट्रयोः यात्रायाः तृतीये चरणे G7 शिखरसम्मेलने भागग्रहणाय प्रधानमन्त्री श्रीमोदी अद्य फ्रांसदेशस्य एवियन नगरं सम्प्राप्स्यति। तस्य आगमनावधौ फ्रांसदेशस्य राष्ट्रपतिना इमैनुअल मैक्रों इत्यनेन औपचारिकरूपेण तस्य स्वागतं क्रियते। द्विपञ्चाशत्तमं G7 शिखरसम्मेलनं ह्यः एवियन नगरे समारब्धम्, यत्र विश्वस्य प्रमुखानाम् अर्थव्यवस्थानां नेतारः प्रमुखेषु वैश्विकसमाह्वानेषु विचार विनिमयं कुर्वन्ति। राष्ट्रपतिः मैक्रोवर्यः प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय समाह्वानान् निवारणाय संयुक्तरूपेण कार्याचरणस्य विषये कार्यरात्रिभोजस्य आयोजनम् अकरोत्। ततः पूर्वं सः अमेरिका देशस्य राष्ट्रपतिना डोनाल्ड ट्रम्प, यूके देशस्य प्रधानमन्त्री कीर स्टार्मर इत्यादिभिः नेतृभिः सह G7 देशानां नेतृणाम् औपचारिकरूपेण स्वागतं विहितवान्। यूरोपीय आयोगस्य अध्यक्षा उर्सुला फोन डेर लेयेन, यूरोपीय परिषदः अध्यक्षः एंटोनियो कोस्टा च शिखरसम्मेलने भागं भजन्ति। केन्द्रीय वाणिज्य उद्योग मन्त्री पीयूष गोयलः ह्यः फ्रांसदेशे मोनाको देशस्य राज्यमन्त्रिणा क्रिस्टोफ मिरमैंड, विदेश कार्य सहकार मन्त्रिणा इजाबेल बेरो आमादेई, वित्त अर्थव्यवस्था मन्त्रिणा फेडरिक कोटालोर्डा इत्येतैः सह मेलनं कृतवान्। सामाजिकान्तर्जालीये पटले श्रीगोयलः अवदत् यत् द्वैपाक्षिकव्यापारं सुदृढं कर्तुं नूतनान् निवेशावसरान् अन्वेष्टुं भारत मोनाको देशयोः मध्ये उपवेशनम् आर्थिकसहकारं सुदृढं कर्तुं च केन्द्रितम् आसीत्। संघलोकसेवा आयोगेन UPSC इत्यनेन अस्य वर्षस्य लोकसेवा प्राथमिक परीक्षायाः परिणामाः घोषिताः। UPSC ह्यः सूच

0: सकते थे।
1: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। स्लोवाकिया ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। कनाडा और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों तथा संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। सरकार ने डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क बढ़ाया, पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं। भारतीय जलपोत दिशा 62,370 मीट्रिक टन LNG के साथ होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित निकला। दक्षिणी कैलिफोर्निया में अमरीकी वायुसेना ठिकाने पर B-52 बम वर्षक विमान हादसे में 8 लोग मारे गए। और फुटबॉल में फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर करते हुए केप वर्दे की टीम ने स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोका। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ। और अब समाचार विस्तार से। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए स्लोवाकिया की सरकार और जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता का सम्मान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्लोवाकिया यात्रा संपन्न हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी की स्लोवाकिया यात्रा कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज फ्रांस के एवियों पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर मजबूत करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर फ्रांस की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ये 13वीं और प्रधानमंत्री मोदी की लगातार 7वीं भागीदारी है।
3: G7 देशों के लिए भारत का बढ़ता महत्व अब केवल रणनीतिक और कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में भी दिखाई दे रहा है। हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौता, नीस में आयोजित भारत इनोवेट्स कार्यक्रम और पेरिस में होने वाले वीवोटेक में भारत आधिकारिक AI साझेदार देश के रूप में भागीदारी इसकी स्पष्ट मिसाल है। इससे पता चलता है कि G7 देश भारत को केवल एक बड़े बाजार के रूप में नहीं, बल्कि प्रौद्योगिकी, नवाचार, विनिर्माण और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं के क्षेत्र में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में देख रहे हैं। गौरतलब है कि फ्रांस की G7 अध्यक्षता कई प्रमुख प्राथमिकताएं, जिनमें वैश्विक असंतुलन को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत बनाना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिम्मेदार उपयोग शामिल है, भारत की क्षमताओं और प्राथमिकताओं के साथ काफी हद तक मेल खाती हैं। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियों फ्रांस।
2: फ्रांस के एवियों शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने अपनी नवीनतम समीक्षा में डीजल और विमान ईंधन ATF के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क SAED में वृद्धि की है। डीजल पर निर्यात शुल्क 13.05 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 14 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं ATF निर्यात पर शुल्क 9.05 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 12.05 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। ये वृद्धि आज से लागू हो गई है। पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। तरल प्राकृतिक गैस ने ले जा रहा टैंकर दिशा ने होर्मुज जल डमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। पश्चिम एशिया में युद्ध शुरू होने के बाद से इस जल मार्ग को पार करने वाला ये पहला भारतीय LNG टैंकर है। इस टैंकर में 62,370 मीट्रिक टन LNG है

0: और भारतीय शिपिंग निगम के अंतर्गत कंसोर्टियम या इसका प्रबंधक है। अमेरिका और ईरान के बीच प्रारंभिक युद्ध विराम समझौते की घोषणा के बाद से ये हॉर्मुज जलडमरू मध्य को पार करने वाले पहले वाणिज्यिक जहाजों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत के आधार पर भारत में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज बात आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार की शून्य सहिष्णुता नीति की।
1: पिछले वर्ष 6 और 7 मई की मध्य रात्रि को भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट किया कि यदि आतंकवाद किसी देश की नीति का हिस्सा बनेगा तो उसका सीधा और सशक्त जवाब दिया जाएगा। इस ऑपरेशन के जरिए भारतीय सेना ने लश्कर ए तैयबा, जैश-ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों के ठिकानों को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थित 9 प्रमुख आतंकवादी लॉन्च पैडों को नष्ट कर दिया। इस अभियान में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। वहीं 9 और 10 मई को भारत ने इतिहास रचते हुए परमाणु हथियार युक्त किसी देश के 11 एयरबेसों पर एक ही अभियान में प्रहार करने वाला पहला राष्ट्र बनने का गौरव प्राप्त किया। इस कार्रवाई के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान वायुसेना के लगभग 20% बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में जम्मू कश्मीर में 15वीं कोर के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लो ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकारी एजेंसी की खुफिया क्षमता और समन्वय की सराहना की।
2: इंडिया फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ,
3: भारत ने मजबूत स्थिति में होने के बावजूद जिम्मेदार लोकतंत्र और परमाणु संपन्न देश होने के नाते उनकी इस अपील को स्वीकार कर लिया। इस तरह ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकी देश को कड़ा सबक सिखाया कि भारत पर किसी भी आतंकी कृत्य को बख्शा नहीं जाएगा।
2: नो टेरर एक्ट इन इंडिया वुड गो अनपनिश्ड।
1: वहीं 7 पड़ोसी देशों से लगी 15,000 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत आज नेशन फर्स्ट के सिद्धांत पर आधारित प्रभावी विदेश नीति का पालन कर रहा है। सिलचर के प्रोफेसर अनूप कुमार डे ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि
4: 263 में से ज्यादातर हिस्सों में इंटरनेशनल जो बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ फेंसिंग हो गया है, उसके कारण न केवल वहां से जो अनुप्रवेश है उसमें रोक लगी है, उसके साथ साथ वहां से जो इलीगल ट्रेड्स होता था वो भी बंद हुआ है।
1: नरेंद्र मोदी सरकार आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाकर देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: अमेरिका में दक्षिणी कैलिफोर्निया के मुजावे स्थित अमेरिकी वायुसेना के अड्डे से उड़ान भरने के तुरंत बाद B-52 बम वर्षक विमान कल रात दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार सभी 8 लोगों की मौत हो गई। सोशल मीडिया पर अमेरिकी सेना ने बताया कि एडवर्स वायुसेना अड्डे पर स्थानीय समय अनुसार सुबह लगभग 11:20 पर विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना मिलने के बाद आपातकालीन दल मौके पर पहुंच गया। इसके बाद हवाई अड्डे को बंद कर दिया गया और आने वाले विमानों का मार्ग बदल दिया गया। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की आशा बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान लगभग 4 महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमत हो गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा की घोषणा से पश्चिम एशिया में उम्मीद की नई किरण जगी है। क्षेत्र के देशों ने लंबे समय से जारी तनाव को कम करने की इस पहल का स्वागत किया है। औपचारिक रूप से इस समझौते पर शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर किए जाएंगे। समझौते में हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर खोलने और वार्ता जारी रहने तक युद्ध विराम बढ़ाने का प्रस्ताव है। इस घटनाक्रम का असर तेल बाजार पर भी दिखा है। आपूर्ति में सुधार की उम्मीद के बीच तेल की कीमतों में गिरावट आई है। समझौते की घोषणा के बावजूद पूरा विवरण जारी नहीं किया गया है, इसलिए प्रतिबंधों में ढील, ईरान के परमाणु कार्यक्रम और हॉर्मुज जलडमरू मध्य में नौ वहन नियमों पर दोनों पक्षों के बीच मतभेद अभी भी कायम है। ऐसे में इसराइल लेबनान सीमा की स्थिति इस समझौते की सफलता की अहम कसौटी बन सकती है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: फीफा विश्व कप में केप वर्डे की टीम ने प्रबल दावेदार स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोक दिया। पहली बार विश्व कप खेल रही केप वर्डे के गोलकीपर वोजिन्ना ने शानदार खेल दिखाया और स्पेन को गोल करने का कोई अवसर नहीं दिया। इस परिणाम को टूर्नामेंट में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ रहा। ग्रुप एच में सऊदी अरब और उरुग्वे का मैच 1-1 से बराबरी पर छूटा। केंद्र ने

0: नीट यूजी पुनः परीक्षा के लिए सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय एजेंसियों को सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश दिया है। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक में यह फैसला किया गया। बैठक में राज्य सरकारों की तैयारियों की समीक्षा की गई। गृह सचिव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से विद्यार्थियों की सुगम यात्रा सुनिश्चित करने की अपील की। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। संघ लोक सेवा आयोग ने इस वर्ष की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। इस वर्ष लगभग 1000 रिक्तियों के लिए 13000 से अधिक उम्मीदवारों का चयन सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए किया गया है। उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in पर परिणाम देख सकते हैं। अंक, कट ऑफ और उत्तर कुंजी अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद वेबसाइट पर जारी की जाएगी। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने शिकागो स्थित भारतीय दूतावास में स्वामी विवेकानंद की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। श्री क्वात्रा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण करके गर्व का अनुभव कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने हम सभी के लिए सेवा और समरसता के जीवन का कालजयी संदेश दिया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने सिंगापुर के नेशनल यूनिवर्सिटी NUS को अमरावती में वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित करने उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय शाखा स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया है, ताकि अमरावती को वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित किया जा सके। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
1: धन्यवाद फरहत। अमेरिका ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध को समाप्त करने और होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने पर सहमति बनने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण लिखता है, अमेरिका ईरान में समझौता, होर्मुज से निकलने लगे जहाज। जनसत्ता की सुर्खी है, स्विट्जरलैंड में 19 को समझौते पर किए जाएंगे हस्ताक्षर। ट्रंप ने नाकेबंदी खत्म करने की मंजूरी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने समझौते का स्वागत किया। अमर उजाला के शब्द हैं, भारत के लिए बड़ी राहत, तेल आपूर्ति सुधरेगी, घटेगी महंगाई। 1000 किलोमीटर मार करने वाली स्वदेशी क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। पत्र लिखता है, स्वदेशी माणिक टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल, सभी मानक पूरे किए। वैष्णो देवी के तीर्थ स्थान पर इस बार पिछला रिकॉर्ड टूटने के आसार, श्रद्धालुओं की संख्या 1 करोड़ होने के पार होने की उम्मीद, देशबंधु की खबर है। वीर अर्जुन ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करते हुए महिला किसानों की तस्वीर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, किसानों की किस्मत बदल देगा जेवर हवाई अड्डा। वाणिज्यिक उड़ानें शुरू, पहली उड़ान से लखनऊ पहुंचे जमीन देने वाले किसान। मानसून लापता, सैटेलाइट तस्वीरों में गायब हुए बादल, दैनिक भास्कर की खबर है। पत्र लिखता है, देश में 4 से 15 जून के बीच 64% कम बारिश दर्ज हुई। लोकसत्य ने अपने संपादकीय पन्ने पर भारत में पिछले कुछ वर्षों में सड़क दुर्घटनाओं में हो रही बढ़ोतरी पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, हर दिन सड़क हादसों में 500 जिंदगी खाक। लेखक ने विश्लेषण दिया है कि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस के स्टाफ और लापरवाह वाहन चालकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के साथ साथ लोगों द्वारा वाहन चलाने में सावधानी बरतने की जरूरत है। लेटे लेटे मोबाइल चलाना, जवानी में दे रहा बुढ़ापे का दर्द। 18 से 45 आयु वर्ग के 5400 युवाओं पर किए गए सर्वेक्षण में हुआ खुलासा। टेकनेस सिंड्रोम से गर्दन दर्द, अकड़न, कंधों में तनाव, सिर दर्द जैसी समस्याएं हो रही हैं, हिंदुस्तान की खबर है।
0: धन्यवाद जया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्लोवाकिया ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। कनाडा और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों तथा संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। सरकार ने डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क बढ़ाया, पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं। भारतीय जलपोत दिशा 62,370 मीट्रिक टन LNG के साथ होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित निकला। दक्षिणी कैलिफोर्निया में अमरीकी वायुसेना ठिकाने पर B-52 बम वर्षक विमान हादसे में 8 लोग मारे गए। और फुटबॉल में फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर करते हुए केप वर्डे की टीम ने स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोका। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज़।

0: बंटन समस्त हितरे लोकंक सरकार समृद्ध कृषक योजना रे चासी भाई भोनमानकु वर्धित हारे एमएसपी मिलुछि त्वरित एमएसपी प्रदान रे ओडिसा देशरे प्रथम सीएम किसान योजना रे चासी परिवारकु आर्थिक सहयोग मुख्यमंत्री कृषि उद्योग योजना रे आकर्षणीय सब्सिडी मत्स्य उत्पादन ओ रप्तानी रे राज्यर उल्लेखनीय अभिवृद्धि
1: समृद्ध ओ सशक्त ओडिसा पई विकासर प्रतिश्रुति ओ जनसेवार प्रतिबद्धता युवशक्तिंक दक्षता नेतृत्व ओ क्रीडा प्रतिभा विकास पई व्यापक कार्यक्रम
0: विकासर मूल मंत्र सुदक्ष मानव संबल दुर्नीति मुक्त शासन
1: विकासर धारा ओडिसा सारा
2: कार्यक्रमर परवर्ती गीतटी शुणन्तु राजनीति कथाचित्रर गीतटिकु रचना करिछन्ति समीर संगीत संयोजन एवं कंठदान करिछन्ति आदेश श्रीवास्तव।

0: को पहुंच रहे हैं हम।
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारत।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: मन की बात प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
1: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
0: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें, मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
1: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।
2: କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗୀତଟି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଦିମ୍ ବିଚାର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରୁ ଗାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ ସଂଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ପଙ୍କଜ ଚଲ। ଗୀତ ରଚନା ନେତ୍ରାନନ୍ଦ ବରିକ। ଗୀତଟି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଦିମ୍ ବିଚାର କଥାଚିତ୍ରରୁ।

0: ଶୁଣୁଥିଲେ କେତେ ଗୋଟି ଓଡ଼ିଆ କଥାଚିତ୍ର ଗୀତ ଆକାଶବାଣୀ ଭବାନୀପାଟଣା। ସମୟ ପୂର୍ବାହ୍ନ 10ଟା ବାଜିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣନ୍ତୁ, ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ଇଂରାଜୀରେ ସମ୍ବାଦ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द वाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए स्लोवाकिया की सरकार और जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता का सम्मान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज फ्रांस के एवियों पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर मजबूत करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर फ्रांस की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत की यह 13वीं और प्रधानमंत्री मोदी की लगातार 7वीं भागीदारी है।
2: G7 देशों के लिए भारत का बढ़ता महत्व अब केवल रणनीतिक और कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक और तकनीकी साझेदारी

0: कार्यों में भी दिखाई दे रहा है। हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौता, नीस में आयोजित भारत इनोवेट्स कार्यक्रम और पेरिस में होने वाले विवोटेक में भारत आधिकारिक एआई साझेदार देश के रूप में भागीदारी इसकी स्पष्ट मिसाल है। इससे पता चलता है कि G7 देश भारत को केवल एक बड़े बाजार के रूप में नहीं बल्कि प्रौद्योगिकी, नवाचार, विनिर्माण और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं के क्षेत्र में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में देख रहे हैं। गौरतलब है कि फ्रांस की G7 अध्यक्षता कई प्रमुख प्राथमिकताएं जिनमें वैश्विक असंतुलन को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत बनाना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिम्मेदार उपयोग शामिल है, भारत की क्षमताओं और प्राथमिकताओं के साथ काफी हद तक मेल खाती हैं। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
1: फ्रांस के एवियो शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। सरकार ने अपनी नवीनतम समीक्षा में डीजल और विमानन टरबाइन ईंधन ATF के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क में वृद्धि की है। डीजल पर निर्यात शुल्क 13.05 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 14 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं ATF निर्यात पर शुल्क 9.05 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 12.05 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। यह वृद्धि आज से लागू हो गई है। पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने नीट UG पुनर्परीक्षा से पहले सुरक्षा और तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने विद्यार्थियों की सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था और परीक्षा प्रक्रिया के निष्पक्षता पर विशेष ध्यान देते हुए इस पुनर्परीक्षा के लिए राज्य सरकारों की तैयारियों की समीक्षा की। गृह सचिव ने सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय एजेंसियों को सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश दिया। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की आशा बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान लगभग 4 महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमत हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सुख और समृद्धि के दरवाजे धैर्य, विवेक और दूरदर्शिता से किए गए कार्यों से ही खुलते हैं। संस्कृत का श्लोक साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि प्रत्येक निर्णय में पूर्ण विवेक आवश्यक है, क्योंकि सोच समझकर उठाया गया कदम सफलता की नींव बनता है। उन्होंने कहा कि बिना विचार किए गए जल्दबाजी में कोई निर्णय या कोई कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे घोर विपत्तियां आ सकती हैं। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक निर्णय में विवेक का प्रयोग करने पर बल दिया। फीफा विश्व कप में केप वर्डे की टीम ने प्रबल दावेदार स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोक दिया। पहली बार विश्व कप खेल रही केप वर्डे के गोलकीपर वोजिन्हा ने शानदार खेल दिखाया और स्पेन को गोल करने का कोई अवसर नहीं दिया। इस परिणाम को टूर्नामेंट में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। उधर दांबुला में एक दिवसीय क्रिकेट की त्रिकोणीय श्रृंखला के रोमांचक मैच में श्रीलंका ए ने भारत ए को सुपर ओवर में 7 रन से हरा दिया। अब फाइनल में पहुंचने के लिए भारत ए को बुधवार को अफगानिस्तान ए पर जीत दर्ज करनी होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, the news read by Subhadra Ramachandran. Prime Minister Narendra Modi will arrive in Evian, France today on a 2-day visit to participate in the G7 summit in the third leg of his 2-nation visit. Upon arrival, French President Emmanuel Macron will formally welcome the Prime Minister. Mr. Modi will then participate in a working session of the summit on the theme, Forging New Partnerships and Rebuilding International Solidarity, along with the leaders of G7 countries, partner countries and representatives of the World Bank and the African Development Bank. On the sidelines of the meeting, the Prime Minister is also scheduled to hold bilateral meetings with Prime Minister of Canada, Mark Carney, Prime Minister of United Kingdom, Keir Starmer, and UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Later, he will attend a gala dinner hosted by French President Emmanuel Macron. India and Slovakia elevated their ties to a comprehensive partnership. The two sides also inked 11 agreements to boost cooperation in key areas, including labour.

0: को पहुंच रहे हैं हम।
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के, अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।

0: पहुंच रहे हैं हम।
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्लोवाकिया की उनकी यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। स्लोवाकिया यात्रा के समापन पर श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दोनों पक्षों के बीच मजबूत व्यापारिक संबंधों से युवाओं को बहुत लाभ होगा। उन्होंने स्लोवाकिया की सरकार और वहां के लोगों से मिले स्नेह के लिए आभार व्यक्त किया तथा स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो को धन्यवाद दिया। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से भी सम्मानित किया। इस बीच श्री मोदी फ्रांस के लिए रवाना हो गए हैं। ब्रातिस्लावा में श्री फित्सो ने प्रधानमंत्री मोदी को विदा किया। उधर फ्रांस के एवियन शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के इस सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज दोपहर एवियन पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर सुदृढ़ करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर फ्रांस की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ये 13वीं और प्रधानमंत्री मोदी की लगातार 7वीं भागीदारी है।
1: G7 देशों के लिए भारत का बढ़ता महत्व अब केवल रणनीतिक और कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में भी दिखाई दे रहा है। हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौता, नीस में आयोजित भारत इनोवेट्स कार्यक्रम और पेरिस में होने वाले वीवोटेक में भारत आधिकारिक AI साझेदार देश के रूप में भागीदारी इसकी स्पष्ट मिसाल है। इससे पता चलता है कि G7 देश भारत को केवल एक बड़े बाजार के रूप में नहीं, बल्कि प्रौद्योगिकी, नवाचार, विनिर्माण और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं के क्षेत्र में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में देख रहे हैं। गौरतलब है कि फ्रांस की G7 अध्यक्षता कई प्रमुख प्राथमिकताएं, जिनमें वैश्विक असंतुलन को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत बनाना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिम्मेदार उपयोग शामिल है, भारत की क्षमताओं और प्राथमिकताओं के साथ काफी हद तक मेल खाती हैं। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियन फ्रांस।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि आगामी नीट UG पुनर्परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं। पुनर्परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम ऐप पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर भी रोक लगा दी है। NTA ने कहा कि ये प्रतिबंध नीट पुनर्परीक्षा के दिन और उसके तुरंत बाद तक लागू रहेगा। एजेंसी ने कहा कि टेलीग्राम को 30 तारीख तक पहले से पोस्ट किए गए संदेशों को संपादित करने की सुविधा को भी बंद करने का निर्देश दिया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राज्यों से एक याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें आरोप लगाया गया है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार कार्ड का दुरुपयोग नागरिकता, निवास स्थान और आवासीय पते के प्रमाण के रूप में किया जा रहा है। याचिका में ये निर्देश देने की मांग की गई है कि इसका उपयोग केवल पहचान सत्यापन तक ही सीमित रखा जाए। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि E20 ईंधन के इस्तेमाल से वाहन बीमा दावों को खारिज किया जा सकता है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि ये दावा निराधार है। इकाई ने स्पष्ट किया है कि E20 ईंधन के इस्तेमाल के बावजूद मोटर बीमा पॉलिसियां वैध रहती हैं। भारत ने आगाह किया है कि अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखा गया तो इसमें सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतानेनी ने सुरक्षा परिषद में सुधारों पर अंतर सरकारी विचार विमर्श बैठक में ये बात कही। ओमान के तट पर हुई दुखद समुद्री घटना के बाद एमटी सेट्टेबेलो जहाज के चालक दल के 21 भारतीय सदस्य सुरक्षित घर लौट आए हैं। ओमान के मस्कट स्थित भारतीय दूतावास ने आज ये जानकारी दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: The UN Ambassador Harish Parvathaneni made these remarks while addressing the intergovernmental negotiations meeting on Security Council reforms. Mr. Parvathaneni said UNSC reform would be grossly inadequate, bordering on failure, if expansion is limited only to the non-permanent category, as it would fundamentally not change the decision-making power structure of the five permanent members.
1: Reflecting expansion of the category of two-year term non-permanent category as a convergence portrays only a part of the picture. Groups and member states add qualifiers and attach other interlinked parameters as they endorse expansion in the non-permanent category. UNSC reform would be grossly inadequate, bordering on failure, if expansion is limited only to the non-permanent category, as it would fundamentally not change the decision-making power structure of the P5. Groups and member states have waited this long for real and meaningful reforms.
0: In women's hockey, India has stormed into the semi-finals of the FIH Hockey Nations Cup in Auckland, New Zealand. India defeated Japan 2-1 in their second Pool A match. Benchmark domestic equity indices were trading moderately up in the afternoon session today. The Sensex rose 348 points to 76,613, while the Nifty added 80 points to 23,934 when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.
2: आकाशवाणी भवानी पटना शुणतु कृषिभित्तिक कार्यक्रम चासर कथा
3: कथाने अछे गाय गोरु छेली मेंढा जतन नै कले पैसा अधा बोले आमे जदि बोले इ छेली मेंढा गाय गोरु बछरा इटा मानके जदि आमे जतन रतन नै करमा बोले जेतकी पैसा रे आमे घिनितिमा तार अधा दाम भी आमके नै मिले हेतिर लागि कथाने भी अछे जतन कले रतन मिलसी। तो आमर चासी ददा नानी माने तो भिन भिन धरणर चास करसन, तार सांगे सांगे छेली चास हेला, मेढ़ा चास हेला, गाय गोरु भी पालन करसन। मातर को टिकिए ध्यान नै दी करी रोग बेमार पड़ले छेली मेढ़ा बोले हेनु ताके खूब क्षति सहबाके पड़सी। हेतिर लागि भिन भिन समयथि आमके काय करबाके पड़वा, गाय गोरु छेली मेढ़ाके टिके देखा रखा करबाके पड़वा, टिके ओसो कसा करबाके पड़वा। तो आजिर कार्यक्रम माध्यमने आमे छेली मेढ़ा इमानके जोर जुरा हेले केन्ता करमा हे बाबद ने जानमा। भिन भिन समयने तो भिन भिन दीपात नसी एका एंता थी जदि गाय गोरु छेली मेढ़ाके जोर हेला बोले काय करमा। पहले तो जानमा केन्ता करी जानमा, हेमान तो कही कुहा नहीं जानन। मातर को छेली मेढ़ा हेला कि गाय गोरु हेला हेमानके जदि आमे टिके ध्यान से देखमा तो आमे जानिपारमा हेमानके काँटा हिचे। जर हिचे बोले तो ताती रहबा एका, आर काणा करसन हेमाने गुटे गोड़ के टेकी करी रखसन, आर पैन पुना बने किना नहीं पियन, आर चोरी चुरा भी हेतकी करी नहीं जन। हेन्ता हेला बोले आमे जानमा जे गाय गोरु छेली मेढ़ा के जर हिचे बोली करी। तेनके काय करमा, तेनके पहला तो आमे पशु डाक्तर आज्ञाकर परामर्श नेमा, आर तांकर हिपासे से जेनटा कहबे हे हिपासे आमके ओसोकोसा करबाके पड़वा, आर केतरा दिग प्रति आमके ध्यान देबाके पड़वा, जेनता करी हेमानकर गुहाल के टिके सफा सुथरा रखबाके पड़वा, आर सुखला रखबाके पड़वा। हेन्ता तो गाय गोरु छेली मेढ़ा मुति मुता देसन एका, आर हेथि भी भिजी करी सेमानके जोर जुरा खोब ही जेसी। गुहाल गुटे एंता जगा थी रखमा जेनटा टिके निगड़ा भागी रही थीबा, आर तांकर एको उका निगड़ी करी तलके भागी जाऊ थीबा, नहीं हेले कहाँ हबा हे जगा सन सन

0: रविवार दिन सकाळ 9:00 रु 10:00 पर्यंत।
1: हेलो
2: हेलो
1: किए
2: हेलो आकाशवाणी भवानी पाटणा।
3: अच्छा दास बाबू आपण को घरटा 1970 रे तयारी थिला राइट हेले ए पर्यंत एते स्ट्रांग केमि अछि।
4: अरे एटा एकदम सिंपल एवं सहीथि पई मु सेते बेले मोर विश्वास रखी दिली एवं आज मध्य चेटिनाड सीमेंट उपरे
5: शक्ति जहां वर्ष वर्ष नुहे बरम पीढ़ी पाई रही थाए। चेटिनाड सीमेंट सुपर ग्रेड सीमेंट 64 वर्षर दृढ़ मूल दुआ। चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।

0: One, two, three, four.
1: सुनो, चानियो। अरे, चानियो मो।
2: देलो।
1: कौन है मिति गानी पकाऊ चाजे?
0: अरे खबर कागजर चारी पृष्ठा उल्टे लेनी स्थानीय खबर कोटे भी नहीं।
1: ओहो, अरे बाबा इत्ती कहीं की? आम रेडियो टा ऑन कलनी? मीडियम वेब्रे 248 मीटर तथा 1206 किलोहर्ट्ज जोगे एफएम माध्यम रे 100.3 मेगाहर्ट्ज जोगे बा न्यूज ऑन एआईआर एप माध्यम रे आम आकाशवाणी भवानी पटना ट्यून करो प्रत्येक दिन सकाळ 10टा बजे 10 मिनिट रु 11टा बजे 10 मिनिट जाए स्थानीय खबर आ मनपसंदर गीत कोनी कार्यक्रम खोल

0: 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के इस सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज एवियन पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। सत्र का विषय है नई भागीदारी बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता पुनर्स्थापित करना। सत्र में G7 देशों, भागीदार देशों के नेता, विश्व बैंक और अफ्रीका विकास बैंक के प्रतिनिधि शामिल होंगे। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री का काफी व्यस्त कार्यक्रम रहेगा। वे कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। रात्रि में वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित भोज में शामिल होंगे। सम्मेलन के दौरान कल प्रधानमंत्री मोदी की अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक प्रस्तावित है। दोनों नेताओं के बीच विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग पर व्यापक चर्चा होने की संभावना है। और अधिक जानकारी के लिए अब चलते हैं एवियो में मौजूद हमारे संवाददाता अंकित कुमार के पास। जी अंकित, G7 के कई देश वर्तमान में धीमी विकास दर और आबादी से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इन देशों की विनिर्माण, नवाचार और सेवा क्षेत्र में भारत के साथ साझेदारी नए अवसरों की खोज में किस तरह सहायता कर सकती है?
1: जी जागृति, आपने वैश्विक परिदृश्य में आ रहे जिन बदलाव की बात की है वो बिल्कुल सही है। देखिए, अगर हम आज के डेट में G7 देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर नजर डालें तो उनमें से कई ऐसे देश है जो अपनी वृद्ध होती आबादी और श्रमिकों की भारी कमी से जूझ रहे हैं। ऐसे में भारत के साथ साझेदारी उनके लिए काफी नेचुरल है और उनका बहुत सीधा फायदा उनको मिलता है। एक तो भारत के पास एक विशाल युवा और कुशल प्रतिभाओं का समूह है जो वैश्विक तकनीक और सेवा क्षेत्र का अभिन्न हिस्सा बन रहे हैं। लेकिन जागृति, यह साझेदारी केवल मानव पूंजी तक ही सीमित नहीं है। जैसा कि हाल में अपनाए गए भारत फ्रांस नवाचार रोडमैप को आप देखें, उससे साफ रेखांकित होता है कि G7 देश अब भारत को केवल एक विशाल उपभोक्ता बाजार के रूप में नहीं देखते हैं, बल्कि भारत एक अहम और विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभरा है। जागृति
0: अंकित, आज के दौर में जैसे जैसे AI आर्थिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता जा रहा है, भारत में मौजूदा डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा समावेशी AI डेवलपमेंट के लिए किस तरह से सहायक हो सकता है?
1: बिल्कुल जागृति, देखिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे यानी DPI और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI का एक साथ आना वास्तव में समावेशी विकास के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। ये देखने वाली बात है कि एकाधिकार वाले निजी प्लेटफॉर्म्स लाने के बजाय भारत ने आधार और UPI जैसी अपनी डिजिटल संरचना को पब्लिक गुड के लिए बनाया है। मतलब पहले दिन से ही व्यापक आबादी और सर्वसमावेशिता के उद्देश्य से ये मॉडल डिजाइन किए गए हैं। और अब जब आप इसमें AI को जोड़ देती हैं तो भारत का DPI बहुत विविधतापूर्ण, उच्च गुणवत्ता वाला और सहमति आधारित डेटाबेस प्रदान करता है जो AI मॉडल्स को जिम्मेदार और निष्पक्ष बनाने के लिए बहुत जरूरी है। जी जागृति,
0: धन्यवाद अंकित इस तमाम जानकारी के लिए। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्लोवाकिया की उनकी यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कल स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा स्थित राष्ट्रपति भवन में वाराणसी केंद्रित प्रदर्शनी में कहा कि कला और संस्कृति में लोगों को करीब लाने की शक्ति है। इस प्रदर्शनी में स्लोवाकिया के कलाकारों की कृतियां भी शामिल थीं। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे ब्रातिस्लावा से बनारस का जुड़ाव बताते हुए स्लोवाकिया के कलाकारों द्वारा वाराणसी की रचनात्मक प्रस्तुति की सराहना की। स्लोवाकिया यात्रा के समापन पर श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दोनों देशों के बीच मजबूत व्यापारिक संबंधों से युवाओं को बहुत लाभ होगा। उन्होंने स्लोवाकिया की सरकार और वहां के लोगों से मिले स्नेह के लिए आभार व्यक्त किया तथा स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो को धन्यवाद दिया। ब्रातिस्लावा में श्री फित्सो ने प्रधानमंत्री मोदी को विदा किया। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से भी सम्मानित किया। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री बुधवार शाम पेरिस पहुंचेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार की सुबह प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इन बैठकों

0: सिलसिला दोपहर तक जारी रहने की संभावना है। इसके बाद प्रधानमंत्री यूरोप के प्रमुख प्रौद्योगिकी और नवाचार आयोजनों में से एक विवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और वहां संबोधन करेंगे। शाम को प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के एक विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों से संवाद करेंगे। कार्यक्रम में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाली सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी आयोजित की जाएंगी। यह आयोजन भारत और फ्रांस के बीच जन से जन संबंधों को और मजबूत बनाने में सहायक होगा। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया है कि आगामी नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं। पुनर्परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम एप्लीकेशन पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। एनटीए ने कहा कि ये प्रतिबंध नीट पुनर्परीक्षा के दिन और उसके तुरंत बाद तक लागू रहेगा। एजेंसी ने कहा कि टेलीग्राम को 30 तारीख तक पहले से पोस्ट किए गए संदेशों को संपादित करने की सुविधा को भी बंद करने का निर्देश दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि विविध संस्कृतियों और भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला भारत स्वतंत्रता के बाद बढ़ती जनभागीदारी से विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनकर उभरा है। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत युवा संसद के प्रतिभागियों से बातचीत में उन्होंने कहा कि 50 लाख से अधिक युवा आज युवा संसद से जुड़े हुए हैं।
2: कैसे हम विकसित भारत के संकल्प को पूरा कर सकते हैं, इसके लिए युवा संसद के माध्यम से तर्क संवाद की संस्कृति को बढ़ाने का एक कार्यक्रम आयोजित किया और निश्चित रूप से आज 50 लाख से ज्यादा युवा संसद से जुड़े। अलग अलग राज्यों के अंदर युवाओं ने उस राज्य के विकसित और विकसित के साथ भारत विकसित के सपनों को साकार करने के लिए अपने विचार रखे।
1: सरकार ने औषधि नियम 1945 में संशोधन अधिसूचित किया है। इसमें गांवों में कफ सिरप की बिक्री पर दी गई छूट वापस ले ली गई है। अब गांवों में कफ सिरप की बिक्री और वितरण केवल विधिवत लाइसेंस प्राप्त फार्मेसियों के माध्यम से ही किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
3: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि औषधि नियमों के अनुसूची के में दवाओं के वर्ग शीर्षक के अंतर्गत शामिल सिरप शब्द को हटा दिया गया है। सिरप शब्द हटाए जाने के बाद अब खांसी के सिरप को इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा। इससे पहले 1000 से कम आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में खांसी के सिरप की बिक्री को लाइसेंस संबंधी प्रावधानों से छूट मिली हुई थी। यह संशोधन सिरप आधारित औषधियों पर नियामकीय निगरानी को और सुदृढ़ करने तथा छूट संबंधी व्यवस्था को वर्तमान जन स्वास्थ्य और सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के उद्देश्य से किया गया है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि E20 ईंधन के इस्तेमाल से वाहन बीमा दावों को खारिज किया जा सकता है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि ये दावा निराधार है। पत्र सूचना कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि E20 ईंधन के इस्तेमाल के बावजूद मोटर बीमा पॉलिसियां वैध रहती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि पिछले दशक में देश भर में बुनियादी ढांचे में सुधार का काम रिकॉर्ड स्तर पर हुआ है। सोशल मीडिया पर MyGov की एक पोस्ट साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए अगली पीढ़ी की अवसंरचना तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राज्यों से एक याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें आरोप लगाया गया है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार कार्ड का दुरुपयोग नागरिकता, निवास स्थान और आवासीय पते के प्रमाण के रूप में किया जा रहा है। याचिका में ये निर्देश देने की मांग की गई है कि इसका उपयोग केवल पहचान सत्यापन तक ही सीमित रखा जाए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी मोहन्ना की पीठ ने केंद्र और सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया। याचिका में तर्क दिया गया है कि फॉर्म 6 के तहत मौजूदा सत्यापन तंत्र अपर्याप्त है और इसके तहत उचित सहायक दस्तावेज के बिना भी व्यक्तियों को चुनावी डेटाबेस में शामिल किया जा सकता है। भारत ने आगाह किया है कि अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार

0: केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखा गया तो इसमें सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतानेनी ने सुरक्षा परिषद में सुधारों पर अंतर सरकारी विचार विमर्श बैठक में ये बात कही।
1: यदि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार सिर्फ अस्थायी सदस्य देशों के विस्तार तक ही सीमित रहता है तो ये सुधार अधूरे और नाकाम साबित होंगे। इससे मौजूदा 5 स्थायी सदस्यों की निर्णय लेने की शक्ति संरचना में कोई बुनियादी बदलाव नहीं आएगा। सुरक्षा परिषद और सदस्य देश लंबे समय से सार्थक सुधारों का इंतजार कर रहे हैं।
0: ओमान के तट पर हुई दुखद समुद्री घटना के बाद एमटी सेटेबेलो जहाज के चालक दल के 21 भारतीय सदस्य सुरक्षित घर लौट आए हैं। ओमान के मस्कट स्थित भारतीय दूतावास ने आज ये जानकारी दी। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण उत्पन्न वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच घरेलू विकास और आर्थिक स्थिरता को मजबूत करने के लिए देश की राजकोषीय नीति में बदलाव आ रहा है। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत का जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण तात्कालिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने से हटकर दीर्घकालिक रणनीतिक स्थिरता की ओर अग्रसर है। आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक लगभग आधा प्रतिशत की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। ताजा समाचार के अनुसार सेंसेक्स 475 अंक बढ़कर 76,740 पर और निफ्टी 115 अंक बढ़कर 23,970 पर पहुंच गया। महिला हॉकी में भारत ने न्यूजीलैंड में आयोजित एफआईएच हॉकी नेशंस कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। पूल ए के अपने दूसरे मैच में भारत ने जापान को 2-1 से हराया। इस जीत के साथ भारत 6 अंकों के साथ पूल ए में शीर्ष पर पहुंच गया है। बृहस्पतिवार को भारत का अगला मुकाबला उरुग्वे से होगा। पुरुष हॉकी में नीदरलैंड्स में आयोजित एफआईएच हॉकी प्रो लीग में कल भारत का सामना जर्मनी से होगा। आकाशवाणी चेन्नई आज अपनी स्थापना की 88वीं वर्षगांठ मना रहा है। एआईआर चेन्नई ने राज्य भर में लाखों लोगों तक पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हिमालय की तराई वाले पश्चिम बंगाल और सिक्किम में रविवार तक कुछ स्थानों पर तेज से बहुत तेज बारिश का अनुमान लगाया है। विभाग ने तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में शुक्रवार तक भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने बताया कि आज दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बिजली गिरने और 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ गरज के साथ बारिश की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रातिस्लावा में वाराणसी केंद्रित प्रदर्शनी की सराहना की। संबंधों को मजबूत करने में कला और संस्कृति की भूमिका पर दिया बल। नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर 22 जून तक प्रतिबंध लगाया। सर्वोच्च न्यायालय ने पहचान प्रमाण पत्र के रूप में केवल आधार कार्ड के उपयोग की याचिका पर केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा। और भारत ने महिला एफआईएच नेशंस कप हॉकी टूर्नामेंट में जापान को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: एतेबेले जाय कार्यक्रम शुणुथिले आकाशवाणी दिल्लीरु आकाशवाणी कटक। आमर परवर्ती कार्यक्रम आंचलिक संवाद शुणि परिबे किछि समय परे।
3: बन्या हेउ बा महाबात्या सबु परिस्थिति रे
4: गारु सहर जाय सबु स्थान रे
3: आबाल वृद्ध बनिता समस्तंक पाई
4: जुआंग ओ सांतालंक ठारु बंडा एवं कोयांक जाए सबुरी भाषा रे
3: केवल आकाशवाणी।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। फ्रांस के एवियन शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के इस सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज एवियन पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। सत्र का विषय है नई भागीदारी बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता पुनर्स्थापित करना। सत्र में G7 देशों और भागीदार देशों के नेता, विश्व बैंक तथा अफ्रीका विकास बैंक के प्रतिनिधि शामिल होंगे। सम्मेलन के दौरान कल प्रधानमंत्री मोदी की अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक प्रस्तावित है। दोनों नेता आपसी हित के महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर बातचीत करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्लोवाकिया की उनकी यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री ने कल स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा स्थित राष्ट्रपति भवन में आयोजित वाराणसी केंद्रित प्रदर्शनी में कहा कि कला और संस्कृति में लोगों को करीब लाने की शक्ति है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि आगामी नीट UG पुनर्परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं। पुनर्परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम एप्लीकेशन पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। NTA ने कहा कि ये प्रतिबंध नीट पुनर्परीक्षा के दिन और उसके तुरंत बाद तक लागू रहेगा। सरकार ने औषधि नियम 1945 में संशोधन अधिसूचित कर दिए हैं। इसमें गांव में कफ सिरप की बिक्री पर दी गई छूट वापस ले ली गई है। अब गांव में कफ सिरप की बिक्री और वितरण केवल विधिवत लाइसेंस प्राप्त फार्मेसियों के माध्यम से ही किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि औषधि नियमों के अनुसूची K में दवाओं के वर्ग शीर्षक के अंतर्गत शामिल सिरप शब्द को हटा दिया गया है। सिरप शब्द हटाए जाने के बाद अब खांसी के सिरप को इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा। इससे पहले 1000 से कम आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में खांसी के सिरप की बिक्री को लाइसेंस संबंधी प्रावधानों से छूट मिली हुई थी। यह संशोधन सिरप आधारित औषधियों पर नियामकीय निगरानी को और सुदृढ़ करने तथा छूट संबंधी व्यवस्था को वर्तमान जन स्वास्थ्य और सुरक्षा आवश्यकताओं के रूप बनाने के उद्देश्य से किया गया है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राज्यों से एक याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें आरोप लगाया गया है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार कार्ड का दुरुपयोग नागरिकता, निवास स्थान और आवासीय पते के प्रमाण के रूप में किया जा रहा है। याचिका में ये निर्देश देने की मांग की गई है कि इसका उपयोग केवल पहचान सत्यापन तक ही सीमित रखा जाए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी मोहन्ना की पीठ ने केंद्र और सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि विविध संस्कृतियों और भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद भारत स्वतंत्रता के बाद बढ़ती जनभागीदारी से विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनकर उभरा है। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत युवा संसद के प्रतिभागियों से बातचीत में उन्होंने कहा कि 50 लाख से अधिक युवा आज युवा संसद से जुड़े हुए हैं। भारत ने आगाह किया है कि अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखा गया तो इसमें सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतानेनी ने सुरक्षा परिषद में सुधारों पर अंतर सरकारी विचार विमर्श बैठक में ये बात कही। भारत ने न्यूजीलैंड में महिला FIH हॉकी नेशंस कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। पूल ए के दूसरे मैच में भारत ने जापान को 2-1 से हराया। इस जीत के साथ भारत 6 अंकों के साथ पूल ए में शीर्ष पर पहुंच गया है। पुरुष हॉकी में नीदरलैंड्स में आयोजित FIH हॉकी प्रो लीग में कल भारत का सामना जर्मनी से होगा।

0: fought 2-2 draw against New Zealand in their opening match at SoFi Stadium in Los Angeles. In women's hockey, India stormed into the semi-finals of the FIH Hockey Nations Cup in Auckland, New Zealand. And with that, we end this news bulletin.
1: आकाशवाणी भवानी पटना समय वर्तमान दिन 3:10 चलित अधिवेशन को शेष करने पूर्व शुणु आज तृतीय अधिवेशन आम केन्द्र प्रचार होगा कार्यक्रम संपर्क सूचना प्रायोजित कार्यक्रम उमंग रिले करी प्रचार करिबो आकाशवाणी कटक केन्द्र अपराह्न 5:00 युववाणी अपराह्न 5:30 आज एणिपारे सीधा प्रसारण में फोन इन प्लीज कार्यक्रम गीतटे मीतटे लोकगीतरे घुमरा गीत शुणे संध्या 6:30 परेषण करेंगे कैलाश चंद्र नायक एवं साथी जिला हलचल क्रम शुणे संबलपुर जिला संपर्क में राति 7:25 आकाशवाणी कटक केन्द्र चाषपास रही राति 7:30 समवेत कंठरे देश बंदना शुणे राति 8:00 राति 8:15 शुणे हिंदी भक्ति गीत शिल्पी मैंने नरेश रैना उमेश पंजा एवं दिलीप चोप्रा स्पोर्ट्स केन राति 8:30 स्पॉटलाइट राति 9:15 एवं मॉनिटॉक एंड मंथन राति 9:30 समस्त कार्यक्रम गुड़िक रैली करी प्रचार करिबो आकाशवाणी दिल्ली रो अनुरोध रे हिंदी कथाचित्रर गीत शुणिबे राति 10:00 राति 10:30 प्रायोजित कार्यक्रम उमंग राति 11:10 शुणे केन्द्र सरकार द्वादश वर्ष कार्यकाल पूर्ति अवसर में विशेष कार्यक्रम रैली करी प्रचार करिबो आकाशवाणी दिल्ली रो एथिला आज तृतीय अधिवेशन रे आम केन्द्र प्रचार होगा कार्यक्रम संपर्क सूचना आकाशवाणी भवानीपाटना शेष कर द्वितीय अधिवेशन भिन्न भिन्न कार्यक्रम सह पुणे उपस्थित हबु अपराह 5:00 से विदाय नौछु।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश।
0: नमस्कार, मैं हूँ अजीत। करते हैं एक बार फिर से कार्यक्रम की शुरुआत एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। इन्होंने पर्यावरण संदेश भेजा है, लिखते हैं,
2: आज जल पेट्रोल डीजल बचाओगे कल बहुत सुख पाओगे।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने खूबसूरत पर्यावरण संदेश के लिए। अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, समीक्षा बेबी आराध्या साहू लिखते हैं,
2: आदरणीय अजीत सर जी, विमलेश मैम जी, सब प्रेम नमस्ते। इस हफ्ते ये भी जानिए, मैं फूलों की जानकारी से हमारा हर पल महक उठा। बहुत सुंदर जानकारी थी। नव तपा की इस चिलचिलाती गर्मी में इन फूलों की जानकारी ने हमें शीतलता प्रदान की। प्रोग्राम की शानदार, मस्त, मनभावन, लाजवाब प्रस्तुति के लिए एनसीईआरटी की पूरी टीम को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं एवं साधुवाद। आपकी इस अथक मेहनत को हम दिल से नमन करते हैं।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें प्रोत्साहित करने वाले इतने सुंदर संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से अखिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम सेजल साहू।
2: बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन।
0: और कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका और मन्नत।
2: और भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता और कमला देवी गुप्ता।
0: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके संदेश श्रोताओं हमें हमेशा प्रोत्साहित करते हैं। इसी तरह से भेजते रहिए संदेश और जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम के साथ।
2: स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। श्रोताओ, जैसा कि आप जानते हैं कि इस श्रृंखला की कड़ियों में हम लेकर आते हैं देश विदेश की रोचक जानकारियाँ,
0: इतिहास, भूगोल, विज्ञान, साहित्य और अनेकानेक विषयों की जानकारियाँ।
2: आशा है आपको वे जरूर पसंद आती होंगी। तो अजीत जी, क्या विषय रहेगा हमारा इस सप्ताह की चर्चा का?
0: विमलेश जी, इस सप्ताह हमारी चर्चा होगी भारत की अनूठी और खूबसूरत झीलों के बारे में।
2: जी अजीत जी, बहुत अच्छा विचार है। तो श्रोताओ, इस सप्ताह हम आपको उमंग कार्यक्रम के माध्यम से लेकर चलेंगे भारत की सुंदर झीलों तक और लेंगे उनकी रोचक जानकारियाँ। लेकिन आइए सबसे पहले जानते हैं कि झील किसे कहते हैं या इसकी सामान्य परिभाषा क्या है।
0: श्रोताओ, सामान्य भाषा में कहें तो धरती के किसी गड्ढे नुमा भाग में चारों ओर से घिरा हुआ स्थिर जल का संग्रह झील कहलाता है। यहाँ का पानी खारा और मीठा दोनों हो सकता है। वैसे कई झीलों में जलधाराएं भी गिरती हैं। लेकिन श्रोताओ, एक प्रश्न और उठता है कि चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ जल का संग्रह ये तालाब भी तो हो सकता है, तो तालाब और झील में अंतर क्या है? जी, आपको बताते हैं, तकनीकी रूप से तालाब और झील अलग अलग हैं। सबसे पहली बात, झील का आकार सामान्यतः बहुत बड़ा होता है जबकि तालाब का अपेक्षाकृत बहुत छोटा। झील की गहराई बहुत अधिक होती है जबकि तालाब की अपेक्षाकृत कम। झील का निर्माण अधिकतर, यदि आप ध्यान दें तो, प्राकृतिक होता है जबकि अधिकांश तालाब मानव निर्मित होते हैं। तो श्रोताओ, ये थी सामान्य जानकारी झील की। आज हम चर्चा करेंगे भारत की एक अनोखी झील के बारे में। इसका नाम है लोकटक झील। ये भारत के मणिपुर राज्य की राजधानी इम्फाल से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर मोइरंग में स्थित है। श्रोताओ, आपको बता दें कि लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। झीलें तो बहुत हैं हमारे देश में, लेकिन आइए जानते हैं जरा कि इस झील में ऐसी कौन सी बात है जो इसे दूसरी झीलों से अलग बनाती है। तो आपको बता दें श्रोताओ, लोकटक झील को तैरते हुए द्वीपों वाली झील कहा जाता है। अब आप कहेंगे कि तैरती हुई झील का क्या मतलब? तो आपको बताते हैं कि इस झील पर मिट्टी, पौधों और ऑर्गेनिक चीजों से निर्मित घने दलदली समूह हैं जो तैरते हुए द्वीपों की तरह दिखाई देते हैं, जिन्हें हम फोमदी कहते हैं। सचमुच ये बड़ी अनूठी बात है। और श्रोताओं, एक बात और आपको बता दें कि इस झील में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है जिसका नाम है केबुल लामजाओ। लेकिन एक प्रश्न श्रोताओं मन में आता है और मुझे लगता है कि ये भी आपको बहुत रोचक लगेगा कि आखिर ये द्वीप तैरते कैसे हैं। जी, इसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको दे दें। एक बड़ी दिलचस्प बात है, इम्फाल हवाई अड्डे पर उतरने वाले अधिकांश यात्री विमान लोकटक झील के ऊपर से ही गुजरते हैं। विमान की खिड़की से झील साफ साफ दिखाई देती है और ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे झील पर बहुत सारी गोल गोल सी दिखने वाली आकृतियां हैं। तो अब आप पूछेंगे कि ये आकृतियां क्या है? तो आपको बताते हैं, जैसा कि हमने पहले भी बताया, इन्हें स्थानीय भाषा में फुमदी कहा जाता है।

0: ये इतने मजबूत होते हैं कि इन पर लोग झोपड़ियां बनाकर रहते हैं। और हाँ श्रोताओं, इन झोपड़ियों में उनके पालतू जानवर भी रहते हैं। यहाँ रहकर लोग छोटी मोटी खेती भी करते हैं और मछलियां पकड़ते हैं। आपको एक बात और बता दें कि लोकटक झील को देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। वे आसपास की सुंदरता को देखते हैं और बोटिंग करते हैं। जी हाँ श्रोताओ, लोकटक झील सैलानियों के आकर्षण का केंद्र तो है ही। कहा जाता है कि मणिपुर में यदि लोकटक झील नहीं देखी तो फिर कुछ नहीं देखा। आपको बता दें, लोकटक झील जैव विविधता से भरी हुई है। यहाँ लगभग 233 जलीय पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं। तो श्रोताओं, कभी यदि आप इस क्षेत्र में आएं, तो अक्सर दुकानों में, होटलों पर और सामुदायिक स्थानों में आपको हिरन की तस्वीर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ, इसे संगाई हिरन कहते हैं। इसे नाचने वाला हिरन भी कहा जाता है। ये दुर्लभ हिरन यही मिलता है और ये मणिपुर का राजकीय पशु है। लोकटक झील के आसपास ये बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। तो श्रोताओं, आज की चर्चा को समाप्त करने से पहले आपको बता दें कि लोकटक झील मणिपुर की जान है, क्योंकि विद्युत उत्पादन से लेकर जलापूर्ति और हजारों लोगों की आजीविका का ये मुख्य आधार है। तो यदि कभी आपको इम्फाल जाना हो तो अपनी घूमने की सूची में सबसे ऊपर रखिए लोकटक झील। सचमुच यहाँ फुंगी से बने हुए तैरते द्वीपों को जब आप देखेंगे तो सचमुच आश्चर्य में पड़ जाएंगे। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी भारत की प्रसिद्ध अनूठी लोकटक झील की। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से प्रश्न है, लोकटक झील में तैरते द्वीप किस चीज से बने हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, लोकटक झील में तैरते हुए द्वीप किस चीज से बने हैं? हाँ, आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। आप हमारा IBS नंबर भी नोट कर दें, 8800440559। और हाँ, आप हमें यानी CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की अद्यतन जानकारी मिलती रहेगी। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं आज का सबसे पहला कार्यक्रम, वो आखिरी पत्ता।
1: साथियों नमस्कार।
2: नमस्कार साथियों।
1: साथियों, आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं कक्षा 9 की अंग्रेजी की पूरक पाठ्य पुस्तक मोमेंट्स के एक पाठ की कथा नाट्य प्रस्तुति। शीर्षक है द लास्ट लीफ, यानी आखिरी पत्ता।
2: ये कहानी प्रसिद्ध अमेरिकी कहानीकार ओ हेनरी द्वारा 1905 में लिखी गई थी। ओ हेनरी का पूरा नाम था ओलिवर हेनरी। तो आइए सुनते हैं ये कथा नाट्य प्रस्तुति।
1: अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन। इसी शहर का एक बहुत सुंदर कस्बा है जो ग्रीनिच विलेज के नाम से जाना जाता है। प्राकृतिक रूप से ये बहुत ही रमणीक और सुरम्य गांव है। इसीलिए इस गांव में अक्सर बहुत से चित्रकार आया करते थे,
2: ताकि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को वो अपने कैनवस पर उतार सकें और दुनिया के सामने ग्रीनिच गांव की खूबसूरती का नजारा पेश कर सकें। इसी ग्रीनिच गांव में एक दिन दो लड़कियां रहने के लिए आईं। वो दोनों चित्रकार थीं और वो भी वहां के सौंदर्य को अपने कैनवस पर उतारना चाहती थीं। एक थी कैलिफोर्निया से और एक थी मेन से।
1: इन लड़कियों में से एक का नाम था जॉन्सी और दूसरी का नाम था सू। दोनों साथ साथ रहने लगी और उन्होंने चित्रकारी शुरू कर दी।
3: अरे जॉन्सी, तुम इतनी सुबह सुबह अपना पेंट ब्रश और कैनवस लेकर कहाँ चल दी?
4: ओ सू, ग्रीनिच के सुहाने सूर्योदय को अपने कैनवस पर उतारना जो है।
3: अरे हाँ, तो चलते हैं और यहाँ की सुंदरता को घर लेकर आते हैं, वो भी अपने अपने कैनवस पर।
4: यस।
2: साथियों, वो मिली तो थी वसंत के महीने में, लेकिन धीरे धीरे शरद ऋतु शुरू हो गई और अब भयंकर सर्दी का मौसम था। उस भयंकर शरद ऋतु में अचानक एक अजनबी ने ग्रीनिच गांव में प्रवेश किया और उसने अपने ठंडे हाथों से लोगों को छूना शुरू किया। उस अजनबी को डॉक्टरों ने नाम दिया था मिस्टर निमोनिया,

0: उसके ठंडे स्पर्श में राहत नहीं थी बल्कि मौत थी। अब ये महामारी बन गई थी दोस्तों, बहुत से लोग गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे, जिनमें एक जॉन्सी भी थी। वो गंभीर रूप से बीमार थी और दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही थी।
1: उसकी मित्र सू उसकी बहुत सेवा करती थी। बड़ी मुश्किल से उसने किसी डॉक्टर से संपर्क किया और दवाओं का इंतजाम किया। एक दिन जब डॉक्टर उसे देखने आया तो उसने नोट किया कि जॉन्सी उससे ठीक से बात भी नहीं कर रही है, बस हां हूं कर रही है। डॉक्टर ने एक खास बात नोटिस की कि जॉन्सी बस खिड़की की ओर लगातार देखती जा रही थी।
0: साथियों, डॉक्टर ने उधर भी देखा लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आया। उसने सू से कहा,
2: सू
3: जी,
2: जॉन्सी तुम्हारी दोस्त है।
3: जी हाँ।
2: भाई मुझसे तो वो ठीक से बात नहीं कर रही, जरा उससे पूछकर मालूम करो कि उसे ऐसी क्या तकलीफ है।
3: जी डॉक्टर साहब।
2: और वो क्यों हमेशा खिड़की की तरफ देखती रहती है?
3: मैं पूछती हूँ।
1: दूसरे दिन सू ने गौर से देखा तो उसे समझ में आया कि जॉन्सी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से खिड़की के बाहर किसी चीज को घूरते हुए कुछ बुदबुदा रही है।
0: वो धीरे से उसके पास गई और सुनने की कोशिश करने लगी।
4: 15, 40
3: क्या?
1: थोड़ी देर के लिए वो चुप रही, फिर उसने गिना, लेकिन इस बार उसने कुछ जल्दी में गिना, जैसे कुछ जल्दी जल्दी घटित हो रहा हो।
4: 13, 12, 11 ओह
3: जॉन्सी,
4: अब सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा है सू।
0: सू ने जॉन्सी को झकझोरा और पूछा,
4: क्या गिन रही हो? 11, 10, 9 ओह, उस दिन वो करीब 100 थे, लेकिन सू, अब वो बहुत कम हो गए हैं।
3: क्या कम हो गए हैं?
4: पहले मुझे गिनने में मुश्किल होती थी, लेकिन हाँ, अब मैं इन्हें गिन सकती हूँ, आसानी से गिन सकती हूँ सू।
1: सू ने फिर से बाहर देखा। खिड़की के सामने बस एक आईवी क्रीपर का पेड़ था जो पतझड़ की मार से बहुत बुरी हालत में था, लगभग अधमरा सा, बस कुछ पीली पत्तियां दिखाई दे रही थी। सू ने उसे दोबारा झकझोरा और पूछा,
3: जॉन्सी, उस दिन क्या 100 थे जब कम हो गए हैं? तुम क्या गिन रही हो?
4: 6, now it's 6, 5, 4 ओह
3: जॉन्सी, तुम्हें क्या हो गया है? मुझे डर लगने लगा है, खिड़की में तो कुछ नहीं है, तुम क्या गिन रही हो? उधर नहीं, मेरी तरफ देखो जॉन्सी। मेरी तरफ देखो
4: सू, ओनली 4 ओह, अब सिर्फ 3 बचे हैं।
3: क्या 3 बचे हैं? What's 3 dear?
4: 3 पत्तियां।
3: पत्तियां?
4: हाँ, खिड़की के पास जो आईवी क्रीपर का पेड़ है ना सू,
3: हाँ हाँ,
4: मैं उसकी पत्तियां गिन रही हूँ। मुझे लगता है,
3: क्या लगता है?
4: यही कि बस अब 3 पत्तियां बची हैं, और जिस दिन आखिरी पत्ता गिर जाएगा ना, उस दिन
3: क्या जॉन्सी?
4: उस दिन मेरी मौत हो जाएगी सू।
3: ओह नो, ये क्या कह रही हो तुम जॉन्सी? ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम्हारा भ्रम है।
4: नहीं, ये तय है सू कि उस दिन मेरी मौत हो जाएगी सू।
3: हाँ
4: सू, अब सिर्फ 3 पत्तियां बची हैं, ज्यादा समय नहीं है मेरे पास सू।
3: जॉन्सी,
4: हाँ, हाँ, हाँ, हाँ,

0: साथियों, सू ने उसे बहुत समझाया। उसी दिन डॉक्टर भी आ गए। डॉक्टर ने भी बहुत समझाया, सारे तर्क दिए, लेकिन जॉन्सी मानने को तैयार नहीं थी।
1: अचानक उस दिन कुछ अजीब सा हुआ। एक बूढ़ा व्यक्ति जॉन्सी को देखने आया। सभी उस बूढ़े व्यक्ति को सनकी और लगभग पागल समझते थे।
0: उस व्यक्ति का नाम था मिस्टर बेयरमैन। वो बहुत दिनों से ग्रीनिच गांव में रह रहे थे।
1: वो चित्रकार थे। बहुत बार उन्होंने चित्रकारी में असफलता देखी थी और लोगों का मजाक भी सहा था। वो घर घर घूमकर हमेशा लोगों से कहा करते थे,
2: मैं अपनी चित्रकारी से एक मास्टरपीस बनाना चाहता हूँ जो अब तक नहीं बना पाया, लेकिन बनाऊंगा जरूर।
0: लोग उसे देखते ही उससे कतराने लगते थे। लोग उस पर हंसते और कहते, देखो मास्टरपीस वाला बुड्ढा आ रहा है। जब वो जॉन्सी को देखने के लिए आए तो सू ने उन्हें बताया कि वो किस वजह से पत्ते गिन रही है।
1: इतने में जॉन्सी ने अपनी दुर्बल आवाज में फिर से गिना,
3: टू, ओह, अब सिर्फ दो पत्तियां ही बची हैं।
0: मिस्टर बेयरमैन ने बड़ी खामोशी से सू को देखा और एक लंबी सांस लेने के बाद गंभीरता से कहा,
2: जॉन्सी, अभी मैं जा रहा हूं, लेकिन देखना देखना तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं जल्दी ही तुम्हें देखने आऊंगा।
0: इतना कहकर तेज कदमों से मिस्टर बेयरमैन वहां से चले गए।
1: अब मात्र दो पत्तियां ही बची थीं। दूसरे दिन की शाम एक पत्ता और गिर गया। सुबह हुई तो जॉन्सी ने देखा अब सिर्फ एक ही पत्ता बचा हुआ है। उसका दिल धक धक कर रहा था। वो सोचने लगी,
3: ओह, आखिरी पत्ता अब शायद गिरने ही वाला है। अब मेरी चंद सांसें ही बाकी है। आखिरी पत्ता गिरने ही वाला है, बस गिरने ही वाला है।
0: साथियों, जॉन्सी खिड़की की ओर देखती रही और इस तरह पूरा दिन बीत गया, पर वो आखिरी पत्ता अभी भी वहीं था। हैरत की बात तो ये कि दूसरा दिन भी बीत गया पर पत्ता वहीं का वहीं था। जॉन्सी खिड़की की ओर टकटकी लगाए बैठी रही और इस दौरान बर्फबारी के साथ पतझड़ के मौसम की बारिश शुरू हो गई। साए साए आंधी चलने लगी। रात भर रुक रुक कर बारिश होती या बर्फ गिरती।
1: जैसे ही सुबह हुई जॉन्सी ने सू से कहा,
3: सू मेरी दोस्त।
4: हाँ जॉन्सी।
3: जरा वो खिड़की खोल दे, मैं देखना चाहती हूँ कि वो आखिरी पत्ता वहां है या नहीं। खोल सरक खिड़की सू।
0: सू की तो मानो रूह ही कांप गई थी। कांपते हुए हाथों से डरते डरते सू ने खिड़की खोली। जॉन्सी ने खिड़की की ओर देखा, लेकिन आश्चर्य, वो पत्ता अभी भी गिरा नहीं था। सुहानी सुबह थी। मंद मंद हवा चल रही थी।

0: आकाश मानो पूरी तरह से धुला हुआ था, चमकता हुआ सूरज निकल आया था। वो आखिरी पत्ता हवा में कांपता हुआ अभी भी वहीं का वहीं था। फिर अचानक जोंसी को कुछ हुआ और उसने सू को बुलाया और कहने लगी,
1: सू? हाँ जोंसी, सू, ऐसा लगने लगा है कि मुझे नई जिंदगी मिलेगी। मैं नहीं मरूंगी।
2: हाँ बिल्कुल,
1: अब मैं नहीं मरूंगी सू।
2: बिल्कुल जोंसी।
1: हाँ, इसलिए ये पत्ता नहीं गिरा।
2: पत्ता?
1: हाँ, मेरी सोच अच्छी नहीं थी जो मैंने अपनी मृत्यु के बारे में सोचा। देखो ना, वो पत्ता अभी भी वही है।
2: हाँ,
1: हाँ,
2: मैंने देखा, मैंने देखा जोंसी, मैंने देखा।
1: देखो, अब वो वहीं पर है। अभी वो नहीं गिरा सू।
2: हाँ जोंसी, वो वहीं पर है, वहीं पर है।
1: हाँ,
3: दो दिन और बीत गए, वो पत्ता वहीं का वहीं था। जोंसी अब ठीक होने लगी थी। डॉक्टर ने आकर उसे चेक किया और कहा,
4: गुड, थैंक गॉड, अब इसकी तबीयत अच्छी हो गई है, ये लड़ाई जीत जाएगी।
3: जोंसी मुस्कुराई और उसने खिड़की की ओर देखा। वो आखिरी पत्ता वही था, पर डॉक्टर के जाने के बाद सू ने कहा,
2: जोंसी, कैसा महसूस कर रही हो?
1: बेहतर।
2: ये लो कॉफी पियो।
1: थैंक यू
2: जोंसी। एक बुरी खबर भी है।
1: क्या हुआ?
2: वो मिस्टर बेरमन, उनकी कल अस्पताल में मौत हो गई।
1: कौन बेरमन? वही बुढ़े कलाकार?
2: हाँ।
1: ओह, जो मुझे उस दिन देखने आए थे?
2: हाँ वही।
1: ओह, जो कहते थे मैं मास्टरपीस बनाऊंगा, वही ना?
2: हाँ वही, मिस्टर बेरमन।
1: ओ गॉड,
2: उनकी हालत दरअसल उस दिन बहुत खराब हो गई थी जब तुमने वो आखिरी पत्ता देखा था। जोंसी, मैं तुम्हें एक राज की बात बताना चाहती हूँ।
1: क्या?
2: क्या कभी तुम्हें ये ख्याल नहीं आया कि सारे पत्ते इस पतझड़ में गिर गए, पर वो आखिरी पत्ता
1: क्यों नहीं गिरा?
2: हाँ,
1: क्यों नहीं गिरा? आखिर क्या हो सकता है सू?
0: जोंसी सोच में पड़ गई। फिर सू ने कहा,
2: जोंसी, जिस दिन वो आखिरी पत्ता बचा था ना, उसके दूसरे दिन किसी ने मिस्टर बेरमन को हमारी ही खिड़की के पास बहुत बुरी हालत में पाया। उनके जूतों में बर्फ भरी हुई थी और उनके पेंच ब्रश और कैनवस इसी आईवी क्रीपर पेड़ के पास पड़े पाए गए थे, जहां वो रात भर पेंटिंग करते रहे।
1: पेंटिंग?
2: हाँ।
1: कैसी पेंटिंग?
2: जो पत्ता तुम देख रही हो वो कुछ और नहीं लेकिन मिस्टर बेरमन की पेंटिंग है, जो उन्होंने आखिरी पत्ते के गिरने के बाद उस कड़कड़ाती सर्दी वाली रात में उस पेड़ पर चिपका दी थी।
1: ओह, तो वो पेंटिंग है?
2: हाँ।
1: असली पत्ता नहीं है?
2: नहीं।
1: लेकिन सू, कितना असली लग रहा है।
2: हाँ जोंसी, बिल्कुल असली है ना, मास्टरपीस?
1: हाँ सू, मास्टरपीस। वो कहा करते थे कि मैं कभी ना कभी मास्टरपीस बनाऊंगा, और सू, उन्होंने बना दिया।
2: हाँ जोंसी,

0: बना दिया उन्होंने मास्टरपीस।
1: उन्होंने बना दिया,
0: उन्होंने बचा दिया मुझे, उन्होंने मेरी जान बचा ली सू, बचा लिया उन्होंने मुझे, उन्होंने मरने से बचा लिया मुझे सू।
1: हाँ
0: मास्टरपीस, मास्टरपीस, वो आखिरी पत्ता, वो आखिरी पत्ता।
2: डबडबाई आंखों से जॉनसी ने एक बार फिर से खिड़की के बाहर देखा। वो आखिरी पत्ता वही था जो अब मास्टरपीस बन गया था।
3: ग्रीनिच गांव के कलाकार एक एक करके आ रहे थे और उस आखिरी पत्ते को विस्मय और श्रद्धा से निहार रहे थे। जॉनसी और सू की आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह रहे थे, मानो वे अश्रु अविरल बहकर उस बूढ़े कलाकार को श्रद्धांजलि दे रहे हो।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वो आखिरी पत्ता।

0: सोशल मीडिया पर कभी ऐसी सामग्री न भेजें जिससे किसी की भावना को चोट लगे। छानबीन किए बिना और सत्यता की जांच किए बिना किसी भी सूचना को शेयर न करें। सावधान रहें और जिम्मेदार नागरिक बनें। NCERT द्वारा जनहित में जारी।
1: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: सुनुले CIIT NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: आरबीआई कहे
1: सठिक आर्थिक आचरण रखे आपण को सुरक्षा रो ध्यान।
2: युवाणी क्रम आज रही लाइव फोन इन कार्यक्रम गीतटीए मितटीए यार सीधा प्रचार पर आम आपण को नहीं जाऊ टॉक स्टूडियो को।

0: ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଭବାନୀ ପାଟଣା ପ୍ରଥମେ ହିନ୍ଦୀରେ ପରେ ପରେ ଇଂରାଜୀରେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣନ୍ତୁ ରିଲି କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ
1: ନମସ୍କାର ଆକାଶବାଣୀ ସମାଚାର କେ ସାଥ ମେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଅରୋଡା प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए दो दिन की यात्रा पर फ्रांस के एवियां शहर पहुंच गए हैं। एवियां पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि वे विश्व नेताओं के साथ बातचीत करने और प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि पृथ्वी को अधिक सतत और समृद्ध बनाने के सामूहिक प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए भारत प्रतिबद्ध है। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की लगातार ये 7वीं उपस्थिति है और इस मंच पर भारत की 13वीं भागीदारी है। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टामर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात करेंगे। इस बीच शिखर सम्मेलन में आज अमेरिका के सहयोगी देशों ने 4 साल से अधिक समय से चल रहे यूक्रेन युद्ध को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एजेंडे में फिर से प्राथमिकता दिलाने के लिए काम किया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन ने कहा कि वे श्री ट्रंप को यूक्रेन का समर्थन जारी रखने और शांति समझौते तक पहुंचने में मदद के लिए रूस पर दबाव बढ़ाने के लिए मनाने का प्रयास करेंगे। अमरीका द्वारा यूक्रेन को दी जाने वाली सहायता में कटौती के बाद फ्रांस और उसके यूरोपीय सहयोगी यूक्रेन को सैन्य और वित्तीय सहायता प्रदान करने वाले सबसे बड़े देश हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की भी सुबह की कार्य बैठक में G7 नेताओं के साथ शामिल हुए, लेकिन वार्ता जल्दी समाप्त हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि

0: 21 जून को नीट यूजी पुनः परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने प्रवेश पत्र डाउनलोड किए हैं। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। सरकार ने औषधि नियम 1945 में संशोधन अधिसूचित किया है। इसमें गांवों में कफ सिरप की बिक्री पर दी गई छूट वापस ले ली गई है। अब गांवों में कफ सिरप की बिक्री और वितरण केवल विधिवत लाइसेंस प्राप्त फार्मेसियों के माध्यम से ही किया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय वित्त वर्ष 2016-17 और 2017-18 के दौरान येस बैंक के ऋणों के कथित धोखाधड़ीपूर्ण आवंटन के संबंध में मुंबई, खंडाला और नई दिल्ली में 17 स्थानों पर छापेमारी कर रहा है। निदेशालय ने सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, सुरक्षा रियल्टी लिमिटेड, ख्याति रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, उनके निदेशकों और कर्मचारियों के साथ साथ येस बैंक के पूर्व कर्मचारी के परिसर की तलाशी ली। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आज डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्व गणना की प्रक्रिया पूरी करके राज्य में जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत की। जनगणना 2027 भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना है और ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रशासनिक तथा सांख्यिकी कार्य है जिसे ऐप आधारित पेपरलेस सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि दार्जिलिंग में गोरखा समुदाय के दीर्घकाल से लंबित मुद्दों का समाधान भारत के संवैधानिक ढांचे के भीतर किया जाएगा। दार्जिलिंग में कुर्सियोंग में एक जनसभा में उन्होंने कहा कि गोरखालैंड प्रादेशिक प्रशासन में कथित भ्रष्टाचार की जाँच की जाएगी और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत इसराइल को लेबनान से पीछे हटना होगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची ने कहा कि दक्षिणी लेबनान पर इसराइल का निरंतर कब्जा अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौता ज्ञापन का उल्लंघन है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका में ग्रुप आई के मुकाबले में आज फ्रांस और सेनेगल आमने सामने होंगे। मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे से शुरू होगा। एक अन्य मुकाबले में नॉर्वे का सामना इराक से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार तड़के 3:30 बजे से खेला जाएगा। भारतीय महिला हॉकी टीम HIEF हॉकी नेशंस कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। पूल ए के अपने दूसरे मैच में भारत ने जापान को हराया। भारत 6 अंकों के साथ पूल ए में शीर्ष पर है। अगला मुकाबला भारत का उरुग्वे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सायरा मुज्तबा। Prime Minister Narendra Modi has arrived in the French city of Avignon on a two-day visit to participate in the G7 summit, which got underway yesterday. After arrival in Avignon, the Prime Minister, in a social media post, said that he is looking forward to engaging with world leaders and exchanging views on key global issues. He added that India remains committed to advancing collective efforts for a more sustainable and prosperous planet. Our correspondent Ankit Kumar, who is covering the Prime Minister's G7 visit, joins us live from Avignon for the latest updates. Ankit, what significance does this G7 summit hold for India?
2: Yes, Saira, it's really, really significant. The Prime Minister will attend a key G7 working session in some time. The focus of this session is on the forging new partnerships and rebuilding international solidarity. The Prime Minister will be sitting down with G7 leaders, partner nations and top officials from the World Bank and the African Development Bank. See, India's regular presence at this summit is highly significant. India has truly emerged as a major global power. Today, the entire world is looking toward New Delhi for real solution to complex crises. Saira, if you see, India is now actively setting the global agenda to resolve these problems. This massive shift is a direct result of Prime Minister's strong diplomacy and his excellent personal rapport with world leaders. Saira.
1: Well, thank you so much, Ankit, for that update. Moving on the sidelines of the summit, Prime Minister Modi is scheduled to hold bilateral meetings with Canadian Prime Minister Mark Carney, United Kingdom Prime Minister Keir Starmer, and

श्रीजुगर किशोर लेखक गङ्गाधर रामचन्द्र राय गुरु रस पञ्चक धार ज्ञानी सुभाष विशी सम्राट घुमुरार ज्ञानी सुभाष

0: ଆକାଶବାଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ସବୁବେଳେ।
1: मोर जड़े जिदिया पड़ोसी अच्छी पूरा कलोनी सोलर पैनल लगे सारे किंतु से मानवा को प्रस्तुत नथिले सतरे बिजुली बिल जीरो आसीपे मु कहली पु ना पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजुली योजना तापर जण जण कर समस्त बिजुली बिल जीरो आसवाक लगला कहले एवं लगे पड़ो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजुली योजना जोड़ी हेबा पाई पंजीकृत करंतु पीएम सूर्यघर डॉट जीओवी डॉट आईएन।
2: खरा दिने अंशुघात प्रति सतर्क रुहंतु।
3: अंशुघातर लक्षण गुड़िक हेउछि प्रबल झाल बोहिबा, मुंड बुलाई अंधार दिसिबा ओ बांति लागिबा, प्रबल शोष लागिबा, मांसपेशी टाणी हेबा, अचेत हेबा किंबा बात मारिबा।
2: अंशुघात निमन्ते पूर्व सतर्कता गुड़िक हेउछि सकाळे किंबा उपर बेला खरा कम थिबा बेले बाहर को जांतु। बाहर को जिबा पूर्वरु जथेष्ट पानी पियंतु। हालुका रंगर ढिला पोशाक छत्ता ओ जोता व्यवहार करंतु। खरारे कठिन परिश्रम करंतु नाही, अधिक दूर चालंतु नाही, मझिरे मझिरे छाईरे विश्राम नियंतु।
3: अंशुघातर प्रतिकार गुड़िक हेउछि रोगी को खोला ओ ठंडा जगह को नी ओआरएस किंबा चीनी लुणा सर्बत अथवा साधा पानी पियंतु। पोशाक गुड़िक यथासंभव खोली दियंतु, मुंड को धोई दियंतु एवं ओदा कपड़ा रे पोछंतु। रोगी को पंखा कूलर किंबा एसी पवन रे सुवाई दियंतु। अवस्थारे उन्नति न हेले स्वास्थ्य कर्मचारी को जणंतु किंबा एम्बुलेंस डाकंतु।
2: वयस्क तथा असुस्थ व्यक्ति एवं गर्भवती महिलांक पई अंशुघातर आशंका अधिक रही थाए।
3: स्वास्थ्य ओ परिवार कल्याण विभाग ओडिशा।
4: सुभद्रा शक्ति बाजार रे एसएचजी मां मानंको हाथ तयारी हस्ततंत्र ओ हस्तकला सामग्री सहित मिलेट्रो प्रस्तुत विभिन्न जैविक सामग्रीर संभार। हस्ततंत्र ओ हस्तकला सामग्री बेस आकर्षणीय एवं प्रतिटी मिलेट सामग्री शुद्ध ओ स्वास्थ्यप्रद। जून 12 रु 16 तारीख पर्यंत एथरर रज मौज को आहुरी उल्लास रे भरिबा को जाउची सुभद्रा शक्ति बाजारर स्वतंत्र रिहाती। एथर रज रे स्वतंत्र मजा सुभद्रा शक्ति बाजार स्ट्रैट स्कूल पाख यूनिट 8 एसआईआरडी परिसर भुवनेश्वर।
5: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
6: टीएलआई है ना,
7: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं पीएलआई पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।

आकाशवाणी संबलपुर आंचलिक खबर पढ़ुचन तर्पण कुमार प्रधान जुहार। पहला मुखिया खबर। राष्ट्रपति आ प्रधानमंत्री ओडिशा गस्त समयाथी सुरक्षा व्यवस्थार समीक्षा कले मुख्यमंत्री। नीट यूजी पुनः परीक्षा के स्वच्छ और सुरक्षित परिचालना करवार लगी टेलीग्राम आप उपरे कटकना जारी कले सरकार। संबलपुर शीतलष्ठी यात्रा थी आज झाड़ुआपड़ा मुदीपड़ा सहित भिन्न भिन्न शिव मंदिर नु हेउचे पतरपेणी आउर कालबैशाखीर बोले पश्चिम ओडिशार भिन्न भिन्न जिला सहित राज्यर पाखापाखी सबु जगह नु धुकागड्डी सांगे हेपारे वर्षा सूचना देला पाणीपाग केन्द्र। एथर पूरा खबर। राज्य सरकार सफल दुई बछर आ केन्द्र सरकार बार बछर पूर्ति अवसर आएगा 19 और 20 तारीख राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ओडिशा गस्ती आसुचन। ई हाई प्रोफाइल गस्त के ठिक भाव परिचालना करबार आउ सुरक्षा व्यवस्था के कड़ाकड़ी करबार लगी आज मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी भुवनेश्वर लोकसभा भवन गोटे उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक करिछन। बैठक थी मुख्य शासन सचिव अनु गर्ग, पुलिस महानिर्देशक वाई वि खुरानिया, गृह विभाग एसीएस हेमंत शर्मा सहित वरिष्ठ अधिकारी मैंने उपस्थित थे। मुख्यमंत्री अवसर कहिछन राष्ट्रपति आएगा 19 तारीख मयूरभंज पहुंचे आउ जून 20 तारीख तांकर जन्मदिन से रायरंगपुर रहबे। सही दिन प्रधानमंत्री श्री मोदी भिल रायरंगपुर पहुंचिकी राष्ट्रपति सहित मिलित मंच साधारण सभा के संबोधित करबे। ये अवसर ओडिशा और मयूरभंज लगी भिन्न भिन्न प्रकल्प शिलान्यास आउ उद्घाटन करा जिबा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को स्लोभाकियार प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान दि अर्डर अफ दि ह्वाइट डबल क्रस फास्ट क्लास प्रदान करा मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी प्रधानमंत्री को हार्दिक अभिनंदन जनईछन। सामाजिक गणमाध्यम ती श्री माझी कहिछन प्रधानमंत्री नेतृत्व आउ विश्व मंचनु भारतर प्रतिष्ठा बढ़ावार लगे प्रधानमंत्री श्री मोदी ई सम्मान पाइछन। प्रधानमंत्री नेतृत्व थी भारत विश्व मंचन नुआ सीघा के पहुंचार सहित पृथ्वी भिन्न भिन्न देश भितर निजर संपर्क के आहरी बरकस करवा बोली मुख्यमंत्री श्री माझी आश करीछन। नीट यूजी 2026 पुनः परीक्षा आगु केन्द्र सरकार सामाजिक गणमाध्यम आप टेलीग्राम उपरे इमास 22 तारीख तक कटकणा जारी करिछन। सेंता आयबा 21 तारीख नीट यूजी प्रवेशिका परीक्षा फेरगा हेबा। जातीय परीक्षण संस्था एनटीए केन्द्र इलेक्ट्रॉनिक्स आउ सूचना प्रजुक्ति मंत्रालय ए निष्पत्ति के स्वागत करिछे। इमास 30 तारीख तक केनसी मेसेज के जेंता संशोधन करा जाय नै पारबा सेथिलागि पदक्षेप नेबार के टेलीग्राम के निर्देश दिया जायथिबार एनटीए तरफु कहा जायछे। गला नीट यूजी परीक्षा प्रश्नपत्र के सामाजिक गणमाध्यम टेलीग्राम थी संशोधन करी प्रश्नपत्र प्रघट कर अभियोग होता छात्र छात्री मान बृहत्तर स्वार्थ के नजर थी रखिकी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रजुक्ति मंत्रालय ई पदक्षेप स्वच्छ और सुरक्षित परीक्षा परिचालना दिगे साहज करवा बोली एनटीए तरफ कह। नीट परीक्षा के श्रृंखलित करवार लगे भुवनेश्वर लोकसभा भवन मुख्य शासन सचिव अनु गर्ग अध्यक्षता थी गोटे बैठक हो जाए। परीक्षा केन्द्र के छात्र छात्री मानकर जास लगी बस व्यवस्था करवार लगे निर्देश दिया जाए। राज्य त्रुटि शून्य नीट परीक्षा आयोजन लगे सब व्यवस्था करा जोर दिया जाए। सियाड़े सुरक्षित नीट यूजी पुनः परीक्षा आउ परिचालनागत प्रस्तुति के नेकर स्वराष्ट्र सचिव गोविंद मोहनकर अध्यक्षता थी गलाकाल गोटे उच्चस्तरीय बैठक हो जाए। परीक्षा केन्द्र न मौलिक सुविधा सुजोग आउ राज्य सरकार प्रस्तुति बाबदे बैठक थी आलोचना होता। छात्र छात्री मानकर यात्रा के सुव्यवस्थित करवार आउ परीक्षा केन्द्र नु सुरक्षा मार्गदर्शिकार कड़ाकड़ी अनुपालन लगी श्री मोहन सबु राज्य आउ केन्द्र शासित अंचल मानकु परामर्श देइछन्। एनटीए तरफ आएगा 21 तारीख हेबार के थिबार नीट यूजी पुनः प्रवेशिका परीक्षा लगी एडमिट कार्ड एनटीए वेबसाइट थी मिली पारुछे। सूचना अनुसार एडमिट कार्ड मिलवार 24 घंटा भितर 10 लाख नु अधिक परीक्षार्थी एडमिट कार्ड डाउनलोड करिछन। परीक्षार्थी माने जनता सहज थी एडमिट कार्ड डाउनलोड करि पारबे सेथिलागि सबु प्रकार पदक्षेप निया जाइछे। आधार एकक परिचय पत्र दुर्व्यवहार बाबदे हेथिबार आवेदन रो सुनानी लगे सुप्रीम कोर्ट केन्द्र आउ राज्य सरकार मानकु जवाब दाखल करबार लगे निर्देश देइछन। नागरिकता आवासिक ठिकणा आउ रहबार जगह क्षेत्र थी आधार परिचय पत्र व्यवहार उपरे कटकना जारी करबार सहित इताके खाली चिन्हट प्रमाणपत्र भाबे व्यवहार करबार के सुप्रीम कोर्ट निर्देश देइछन। प्रधान विचारपति जस्टिस सूर्यकांत आउ जस्टिस भी मोहनांकर खंडपीठ इ मामलार विचार करी करी जवाब दाखल करबार लगी केन्द्र आउ राज्य

आकाशवाणी। संबाद पढ़ुछंती प्रज्ञा परिमिता जेना। G7 सम्मेलन रे जोग देवा पई फ्रांस रे इवेंट ठारे पहुंचले प्रधानमंत्री। आसंताकाली अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सहित प्रधानमंत्री हेब बैठक। खरीफ ऋतु में स्वल्प वृष्टिपात जिल्लागुड़िक आगुआ पदक्षेप नेबा लागि कृषि मंत्री गुरुत्व। निशामुक्त भारत सप्ताह को आसंताकाली उद्घाटन करिवे केन्द्र सामाजिक न्याय मंत्री। फ्रांस रे यूपीआई रो शुभारंभ कले केन्द्र वाणिज्य मंत्री। एवं फिफा विश्वकप ग्रुप आई मैच रे आज फ्रांस एवं सेनेगल मध्यरे हेबो खेल। फ्रांस रे एवेन शहर रे गतकाली ठारु आरंभ होइतिबा G7 सम्मेलन रे जोग देबा पई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुई दिनिया गस्त रे आज सेठारे पहुंचंती। एवेन रे पहुंचिया परे प्रधानमंत्री सामाजिक गणमाध्यम रे पोस्ट करी कहिछंती विश्वर प्रमुख नेतामानक सह आलोचना करिबा एवं गुरुत्वपूर्ण विश्वस्तरीय प्रसंग रे मतामत विनिमय करिया पई से आशा रखिछंती। स्थायी एवं समृद्ध विश्व गठन पई भारत मिलित प्रयास को आगे नेबाकु सदासर्वदा प्रतिबद्ध बोली प्रधानमंत्री कहिछंती। या पूर्वरु प्रधानमंत्री एवेन गस्त समय रे स्विट्जरलैंड रो जेनेवाटारे अवतरण करथिले। विमान बंदर रे स्विट्जरलैंड राष्ट्रपति गाय पार्मेलिन तांकु स्वागत संबर्धना जनाइथिले। उभय भारत स्विट्जरलैंड सहभागिता को आहुरी मजबूत करिया पई सेमानकर प्रतिबद्धता दोहराइथिले। G7 सम्मेलन रे प्रधानमंत्री श्री मोदी सप्तम थर पई जोग देउछंती एवं भारत त्रयोदश थर अंशग्रहण करबाकु जाउछि। सम्मेलन रे भारतर निरंतर उपस्थिति विश्वर प्रमुख आह्वान गुडिकर मुकाबला करबा एवं शांति सुरक्षा स्थायी विकास तथा

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति सिंह और श्रोताओं, हम एक बार फिर मौजूद हैं नए क्लेवर, नए रंग और नए अंदाज के साथ, जहां हमारे साथ कार्यक्रम में है हर मैच का ताज़ा अपडेट, हर मैदान का हाल और हर खिलाड़ी की खबर, और वो सब कुछ अधिक डिटेल्स के साथ। तो शुरू करते हैं स्पोर्ट्स कैन के साथ खेल के मैदान की हर बात। सबसे पहले नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज ग्रुप आई के मुकाबले में फ्रांस और सेनेगल आमने सामने, कल खेले गए सभी चार मुकाबले ड्रॉ। भारतीय टीम FIH हॉकी विमेंस नेशन कप में जापान को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंची। मकाऊ बैडमिंटन ओपन 2026 आज से शुरू हुआ। थरुन मन्नेपल्ली और ईशा रानी बरुआ करेंगे भारतीय चुनौती का नेतृत्व। T20 महिला क्रिकेट विश्व कप में भारतीय टीम कल अपने दूसरे ग्रुप मुकाबले में नीदरलैंड्स से खेलेगी, और भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला कल लखनऊ में खेला जाएगा। तो कार्यक्रम को शुरू करते हैं वायरल फुटबॉल फीवर के साथ, जहां पूरी दुनिया के ऊपर फुटबॉल का ये खुमार सर चढ़ के बोल रहा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज अमेरिका के न्यू जर्सी में ग्रुप आई के मुकाबले में फ्रांस और सेनेगल आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात्रि 12:30 बजे से शुरू होगा। वहीं एक अन्य मुकाबले में नॉर्वे का सामना इराक से होगा। ये मुकाबला भारतीय समय अनुसार सुबह 3:30 बजे के करीब खेला जाना है। इससे पहले कल फीफा विश्व कप में कई उलटफेर देखने को मिले। विश्व कप में 68 साल बाद एक ही दिन खेले गए 4 मुकाबले ड्रॉ रहे।
1: फीफा विश्व कप 2026 में कल इस सत्र का सबसे बड़ा उलटफेर देखा गया, जहां केप वर्डे ने असाधारण प्रदर्शन करते हुए विश्व कप की प्रबल दावेदार स्पेन को गोल रहित बराबरी पर रोक दिया, और इस मैच के हीरो केप वर्डे के 40 वर्षीय गोलकीपर वोजिन्हा रहे, जो एक ढाल की तरह गोल कोस्ट पर डटे रहे और कई गोल बचा कर टीम की रक्षा की। इस मुकाबले के बाद वोजिन्हा ने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
2: For this moment, for this dream, a lot of generation in the past was dreaming with this. They didn't achieve many of ex-football players from national team. And now the dream come true. All of us, we are happy because we work a lot.
1: एक और ड्रॉ मुकाबले

0: ग्रुप जी के पहले मैच में ईरान और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया, जहां दोनों टीमें 2-2 के बराबरी पर रही। कैलिफोर्निया के लॉस एंजेलिस स्टेडियम में खेला गया ये मैच बेहद रोमांचक रहा, जहां न्यूजीलैंड ने एलिजा जेस्ट के 2 गोलों की बदौलत पहले 2-0 की बढ़त बनाई, लेकिन ईरान ने शानदार पलटवार करते हुए 2 गोल दागे और मुकाबले को ड्रॉ करा दिया। दिन का तीसरा ड्रॉ मुकाबला सिएटल स्टेडियम में बेल्जियम और मिस्र के बीच देखने को मिला, जहां कांटे की टक्कर वाला ये मुकाबला 1-1 के बराबरी पर समाप्त हुआ। मिस्र विश्व कप में अपनी पहली जीत के करीब पहुंच गया था, लेकिन बेल्जियम के वैकल्पिक खिलाड़ियों के त्वरित जवाब ने उसे निराश कर दिया। मिस्र के इमाम अशूर को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। अमेरिका के मियामी स्टेडियम में सऊदी अरब और उरुग्वे के बीच ग्रुप एच का पहला मैच भी 1-1 से ड्रॉ रहा। वहीं सऊदी अरब के लिए अब्दुल्लाह अल अमरी ने 41वें मिनट में रिबाउंड पर गोल किया, जबकि उरुग्वे के मैक्सी अराउजे ने 80वें मिनट में बराबरी का गोल दाग दिया। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैन।
1: तो ये फीफा का मंच है, जहां रोमांच, उम्मीदें, जज्बा और हुनर हर संभावना को नतीजे में बदलने की क्षमता रखता है। और अब यूएस के बाद चलते हैं न्यूजीलैंड की तरफ, जहां भारतीय महिला हॉकी टीम ने एफआईएच हॉकी विमेंस नेशन कप 2026 के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने आज पूल ए के मुकाबले में जापान को 2-1 से हराकर अंतिम चार में जगह पक्की की।
2: It's going to go to core again. It is. And it's there. India have hit the lead.
3: भारत ने पहले ग्रुप मैच में अमेरिका पर मिली रोमांचक जीत का सिलसिला आज ऑकलैंड के नॉर्थ हार्बर नेशनल हॉकी सेंटर में भी जारी रखा और एफआईएच हॉकी विमेंस नेशंस कप के अपने दूसरे पूल ए मैच में जापान को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। कप्तान सलीमा टेटे ने 33वें मिनट और लालरेम सियामी ने 49वें मिनट में भारत के लिए गोल किया। जापान के लिए एकमात्र गोल हिरा मित्सु ए ने 35वें मिनट में किया। मैच के पहले हाफ में दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली और हाफ टाइम तक कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी। तीसरे क्वार्टर में भारत ने 33वें मिनट में मिले एक पेनल्टी कॉर्नर को गोल में तब्दील कर अपना खाता खोला। नवनीत कौर के शॉट को निक्की प्रधान ने सलीमा की तरफ धकेला, जिससे कप्तान ने बिना कोई मौका गंवाए गोल पोस्ट में भेजकर भारत को 1-0 की बढ़त दिला दी। इसके ठीक 2 मिनट बाद जापान की हिरा मित्सु ने पेनल्टी कॉर्नर पर गोल करके स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया। मैच के आखिरी क्वार्टर में 49वें मिनट में सुशीला चानू पुखराम बम ने सर्कल के किनारे से गोल की ओर एक तेज पास दिया, जिसे एक बेहतरीन गोल में बदलते हुए लालरेम सियामी ने भारत को जीत दिलाई। कप्तान सलीम टेटे को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारतीय टीम इस जीत के साथ पूल ए में शीर्ष पर पहुंच गई है। भारत के 6 अंक हो गए हैं। भारत अब टूर्नामेंट के अपने आखिरी पूल ए मैच में 18 जून को उरुग्वे से भिड़ेगा। आकर्षिता सिंह, स्पोर्ट्स स्कैन।
1: तो भारतीय महिला हॉकी टीम ने अपने शानदार खेल से वापस एक बार फॉर्म में वापसी का शंखनाद कर दिया है। और अब बात बैडमिंटन की। मकाऊ बैडमिंटन ओपन 2026 आज से शुरू हो गया है। एशियन गेम्स 2026 में भारतीय बैडमिंटन टीम का हिस्सा थरुन मन्नेपल्ली और ईशा रानी बरुआ मकाऊ में देश की चुनौती की अगुवाई करेंगे।
0: युवा भारतीय बैडमिंटन टीम मकाऊ ओपन में देश की अगुवाई के लिए तैयार है। आगे आने वाली एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों को देखते हुए कई दिग्गज खिलाड़ियों को इस प्रतियोगिता से आराम दिया गया है, जिसमें ऑस्ट्रेलियाई ओपन में सेमीफाइनल तक का सफर तय करने वाली 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी का स्टार जोड़ी शामिल है। इन बड़े खिलाड़ियों की अनुपस्थिति में टीम का पूरा दाबोदार युवा और उभरते खिलाड़ियों पर है। पिछले साल मकाऊ ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली थरूर मन्नेपल्ली पुरुष सिंगल्स टीम की अगुवाई कर रहे हैं। अनुभवी किरण जॉर्ज, ऋत्विक संजीवी और शंकर सुब्रमण्यम भी इस दल का हिस्सा है, जबकि रौनक चौहान ने आज अपने दोनों क्वालिफायर मुकाबले जीतकर मुख्य ड्रॉ जगह बना ली है। महिला सिंगल्स की कमान ईशा रानी बरुआ के हाथ में है, जिन्हें अनमोल खरब और तस्मीन मीर का साथ मिलेगा। आकर्षि कश्यप, रक्षिता रामराज, श्रेयंसी बली शेट्टी, मानसी सिंह, श्रेया लेले और अश्मिता चालिहा भी भारतीय महिला सिंगल्स टीम का हिस्सा है। अगर डबल्स की बात की जाए तो भारत की एकमात्र पुरुष डबल्स जोड़ी और तीनों महिला डबल्स जोड़ी आज पहले ही दौर में बाहर हो गई। मिक्स्ड डबल्स में 5 भारतीय जोड़ी मुख्य ड्रॉ में शामिल है। पीवी सिंधु एकमात्र भारतीय सेटलर है जिन्होंने मकाऊ ओपन जीता है। सिंधु ने लगातार 2013 से 2015 तक लगातार 3 बार ये खिताब जीता था। अमीशा, स्पोर्ट्स कैन।
1: तो नए जज्बे के साथ भारतीय खिलाड़ी बैडमिंटन के कोर्ट पर धमाल मचाने को तैयार हैं। और अब बात की जाती है फिट इंडिया की। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर

0: मनसुख मांडविया कल मुंबई के वर्ली सर्किल ट्रैक पर विशेष फिट इंडिया साइक्लोथॉन का नेतृत्व करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने बताया कि यह आयोजन व्यापक फिट इंडिया अभियान का हिस्सा है। मुंबई के सुरमय समुद्र तट के मनोरम दृश्यों के बीच विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लगभग 250 साइकिल चालक श्री मांडविया के साथ साइकिल चलाते हुए फिट इंडिया का संदेश देते हुए नजर आएंगे। इस आयोजन के साथ ही 21 जून को मनाए जाने वाले 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के वैश्विक समारोह का शुभारंभ भी हो जाएगा। और अब बात की जाए क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट के महासंग्राम की, जो कि इंग्लैंड और वेल्स में चल रहा है। T20 महिला क्रिकेट विश्व कप में भारतीय टीम कल अपने दूसरे मुकाबले में नीदरलैंड से खेलेगी। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में अपने अभियान की शानदार शुरुआत करने वाली भारतीय टीम इस मुकाबले के लिए पूरी तरह से तैयार है।
1: आईसीसी T20 महिला क्रिकेट विश्व कप के अपने पहले ही मुकाबले में पाकिस्तान पर शानदार जीत दर्ज करने के बाद हरमनप्रीत की विमेंस इन ब्लू के हौसले बुलंद हैं। दूसरे मुकाबले में भारत का सामना नीदरलैंड से होगा। ग्रुप ए का ये मैच भारतीय समय अनुसार दोपहर 1:30 बजे से लीड्स के हेडिंगले मैदान में खेला जाएगा। एक तरफ जहां भारत ने 64 रन की विशाल जीत के साथ अपने अभियान का आगाज किया है, वहीं दूसरी तरफ नीदरलैंड्स को अपने पहले मुकाबले में बांग्लादेश से हार का सामना करना पड़ा। हरमनप्रीत की आर्मी के लिए इस मैच की राह काफी हद तक आसान नजर आ रही है। पहले मैच में शानदार बल्लेबाजी करने वाली उप कप्तान स्मृति मंधाना से टीम को फिर एक बड़ी पारी की उम्मीद होगी और टीम को अपनी दूसरी सलामी बल्लेबाज शिफाली वर्मा से इस मैच में बड़े स्कोर की चाह रहेगी। कप्तान हरमनप्रीत कौर और ऋचा घोष की नजर अच्छी शुरुआत को एक बड़े स्कोर में बदलने पर होगी, जबकि पहले मैच में कुछ खास न कर सकी जेमिमा रॉड्रिक्स और भारती फुलमाली नीदरलैंड्स के सामने वापसी करते हुए फॉर्म हासिल करना चाहिए। पहले मैच में अपनी शानदार गेंदबाजी से पाकिस्तान को पस्त करने वाली दीप्ति शर्मा पर भी सबकी नजरें रहेंगी, जिनको श्री चरणी का भरपूर साथ मिलेगा। अरुंधति रेड्डी, क्रांति गौड़, श्रेयंका पाटिल भी गेंदबाजी के मोर्चे पर टीम को मजबूती देती नजर आएंगी। इस दौरान BCCI ने टीम के लीड्स पहुंचने का एक वीडियो साझा किया। इसमें अपनी साथी अरुंधति रेड्डी के बारे में उप कप्तान स्मृति मंधाना ने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
2: She also keeps motivating me to do the right things in terms of my preps and doing the right things on the ground.
1: भारतीय टीम के लिए ये मौका बेंच पर बैठे अपने खिलाड़ियों को आजमाने के लिए भी अच्छा अवसर है। दूसरी तरफ अपना पहला T20 विश्व कप खेल रही नीदरलैंड्स ने पहले मैच में बांग्लादेश के खिलाफ अच्छा मुकाबला खेला था, लेकिन टीम को हार का सामना करना पड़ा। टीम की उम्मीदों का दारोमदार कप्तान और विकेटकीपर बेबेट डी लीडे के कंधों पर है, जिन्होंने पिछले मैच में अर्धशतक की पारी खेली थी। उनके अलावा टीम को आयरिस ज्वेलिंग, हेदर सीजर्स, सिल्वर सीजर्स और कैरोलिन डी लैंग से भी अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी। दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीमों का सामना करने से पहले भारतीय टीम की नजर नीदरलैंड्स पर एक बड़ी जीत दर्ज कर ग्रुप में अपनी स्थिति मजबूत करने पर होगी। प्रियंका अरोड़ा, स्पोर्ट्स कैन।
0: और हरमनप्रीत की आर्मी के दूसरी तरफ शुभमन गिल एंड ब्रिगेड भी एक ऐसी ही बड़ी जीत की राह में लखनऊ पहुंच चुकी है। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला कल लखनऊ में खेला जाना है। शुभमन गिल की अगुवाई में भारतीय टीम इस श्रृंखला को अपने नाम करने के इरादे से उतरेगी, तो वहीं मेहमान टीम अफगानिस्तान की नज़र ये मैच जीतकर श्रृंखला में वापसी करने पर होगी।
3: भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला कल दोपहर 1:30 बजे से लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। धर्मशाला में अफगानिस्तान के ऊपर शानदार जीत दर्ज करने के बाद शुभमन गिल की मैन इन ब्लू कल सीरीज अपने नाम करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। भारतीय टीम बल्लेबाजी, गेंदबाजी और खेल के हर मोर्चे पर मजबूत नजर आ रही है। कप्तान शुभमन गिल का बल्ला IPL के बाद न्यू चंडीगढ़ में टेस्ट मैच और फिर पहले एक दिवसीय मैच में भी रनों का पहाड़ खड़ा करता नजर आया, जिनको इन फॉर्म KL राहुल का बखूबी साथ मिल रहा है और दोनों खिलाड़ी लगातार रन भी बना रहे हैं। हिटमैन रोहित शर्मा पर भी दर्शकों की नजरें होंगी। रोहित पहले एक दिवसीय मैच में दुर्भाग्यशाली रहे थे और 16 रन के स्कोर पर रन आउट हो गए थे। पिछले कुछ एक दिवसीय मुकाबले को देखें तो रोहित का बल्ला शांत नजर आया है। ऐसे में 2027 विश्व कप की राह तलाश रहे रोहित शर्मा से एक बड़ी पारी की उम्मीद होगी। ईशान किशन और श्रेयस अय्यर भी अच्छे फॉर्म में है, जबकि वॉशिंगटन सुंदर और नीतीश कुमार रेड्डी टीम को बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों क्षेत्र में

मजबूती प्रदान कर रहे हैं। अगर गेंदबाजी की बात की जाए तो धर्मशाला में अपना डेब्यू करने वाले स्पिनर हर्ष दुबे और तेज गेंदबाज गुरनूर बरार से भी टीम को उम्मीदें होंगी, जिन्होंने अपने पहले मैच में 3-3 विकेट चटकाए थे। अर्जदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा गेंदबाजी में उनका साथ देते दिखेंगे। ये श्रृंखला भारत के लिए 2027 विश्व कप की तैयारियों की शुरुआत मानी जा रही है। ऐसे में इस टीम की नजर हर मैच में अपना मनोबल बढ़ाने और बेहतर कॉम्बिनेशन तलाशने पर होगी। अगर मेहमान टीम अफगानिस्तान की बात की जाए तो उनकी नजर किसी भी हालत में इस मैच को जीतकर श्रृंखला में वापसी और

0: मैच में अपना मनोबल बढ़ाने और बेहतर कॉम्बिनेशन तलाशने पर होगी। अगर मेहमान टीम अफगानिस्तान की बात की जाए तो उनकी नज़र किसी भी हालत में इस मैच को जीतकर श्रृंखला में वापसी और बराबरी करने पर होगी। पहले मैच में शतक बनाने वाले रहमानुल्लाह गुरबाज अच्छी लय में हैं। राशिद खान, अजमतुल्ला उमरजई और इब्राहिम जादरान से भी मेहमान टीम को उम्मीदें होंगी। अगर ये खिलाड़ी चलते हैं तो भारत के लिए काफी हद तक मुसीबत बन सकते हैं, लेकिन भारतीय टीम की नज़र तीसरे और अंतिम एक दिवसीय मैच के लिए चेन्नई पहुंचने से पहले ही सीरीज अपने नाम करने पर होगी। प्रशांत कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
1: तो शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम की नज़र होगी कि तीसरे मैच से पहले श्रृंखला को अपने नाम कर लिया जाए। वहीं दर्शकों की नज़र होगी कि इस बार धर्मशाला की तरह बारिश इस खेल में कोई खलल डालती हुई नज़र ना आए। भारतीय तलवारबाजी संघ ने 26वीं सीनियर एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप 2026 के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। भारत पहली बार इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता की मेज़बानी करेगा। 19 से 24 जून तक नई दिल्ली में होने वाली इस प्रतियोगिता में 30 से अधिक देशों के 400 से अधिक शीर्ष खिलाड़ी भाग लेंगे। भारत की पहली और एकमात्र तलवारबाज ओलंपिक खिलाड़ी सीए भवानी देवी की अगुवाई में 12 महिला और 12 पुरुष खिलाड़ियों वाली 24 सदस्यीय भारतीय टीम इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेगी। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप अपने सुझाव और अपनी राय हमें sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के एवियां में G7 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। वे आज रात कनाडा तथा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। कल अमेरिका के राष्ट्रपति से मुलाकात होगी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चालू खरीफ सीजन की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स के पुनरुद्धार और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं की भर्ती की घोषणा की। भारत और जापान ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी और सतत विकास पहलों पर सहयोग बढ़ाने के लिए पेरिस समझौते के अंतर्गत संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र के लिए नियम अपनाए। ईरान ने कहा अमरीका के साथ युद्ध विराम समझौते के लिए इसराइल को लेबनान से पीछे हटना होगा। उत्तर भारत में कल बिजली कड़कने और तेज आंधी का अनुमान। और 26वीं सीनियर एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एवियां में चल रहे G7 शिखर सम्मेलन के उच्च स्तरीय कार्य सत्र में भाग ले रहे हैं। नई साझेदारियां बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का पुनः निर्माण विषय पर आधारित इस सत्र में G7 देशों के नेता, सहयोगी देशों के नेता और विश्व बैंक तथा अफ्रीकी विकास बैंक के वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। बैठक की शुरुआत फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा प्रधानमंत्री मोदी और अन्य भागीदार देशों के नेताओं का औपचारिक स्वागत करने के बाद हुई। शिखर सम्मेलन के बारे में अधिक जानकारी के लिए चलते हैं एवियां में मौजूद हमारे संवाददाता अंकित कुमार के पास। अंकित, भारत के लिए सम्मेलन का रणनीतिक महत्व क्या है?
3: जी प्रियंका, देखिए, भारत इस G7 शिखर सम्मेलन को केवल एक प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ संवाद के मंच के रूप में ही नहीं, बल्कि ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूती से रखने के अवसर के रूप में भी देख रहा है। भारत की अपेक्षा है कि व्यापार, प्रौद्योगिकी, नवाचार और भरोसेमंद सप्लाई चेन जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ाया जाए। खासतौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती तकनीकों के क्षेत्र में भारत की भूमिका लगातार बढ़ रही है और इस दिशा में भारत ठोस साझेदारियों की उम्मीद कर रहा है। इसके साथ ही इस बात की भी उम्मीद है कि भारत विकासशील देशों से जुड़े मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाएगा। इनमें सतत विकास, जलवायु, वित्त, ऊर्जा सुरक्षा और समावेशी आर्थिक विकास जैसे विषय शामिल है। भारत लगातार ये कह रहा है कि वैश्विक नीतियों और निर्णयों में विकासशील देशों की चिंताओं को पर्याप्त स्थान मिलना चाहिए। जी प्रियंका,
2: धन्यवाद अंकित इस जानकारी के लिए। शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा प्रधानमंत्री मोदी का राजनयिक कार्यक्रम भी व्यस्त है। वे कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर,

0: और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगी। आज रात वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित भव्य रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की कल अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात होगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के साझा दृष्टिकोण ने भारत इनोवेट्स की आधारशिला रखी, जो भविष्य के लिए एक परिवर्तनकारी मंच बन गया है। श्री गोयल ने ये बात फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स के समापन समारोह में कही। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें fcat.edcil.co.in पर।

0: सहायता टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय कृषि समीक्षा बैठक में चालू खरीफ सीजन के लिए देश भर में की गई तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कपास उत्पादन बढ़ाने, दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और कम वर्षा वाले जिलों के लिए अग्रिम आकस्मिक योजनाओं पर विशेष बल दिया। एक रिपोर्ट।
2: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट संदेश दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में किसानों के हितों की रक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बैठक में इस बात पर भी ध्यान केंद्रित किया गया कि फसल के मौसम के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रतिकूल मौसम स्थिति से कृषि और किसानों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम पहले से ही उठाए जाएं। श्री चौहान ने निर्देश दिए कि जिन जिलों में कम वर्षा या असमान वर्षा की संभावना है, वहां पहले से ही पूरी तैयारी की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे जिलों की स्पष्ट पहचान की जानी चाहिए और राज्य सरकारों के समन्वय से फसलवार आकस्मिक योजनाएं तैयार की जानी चाहिए, जिससे मौसम संबंधी किसी भी चुनौती की स्थिति में किसानों को तत्काल विकल्प, सलाह और सहायता प्रदान की जा सके। इसके साथ ही उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि जल संरक्षण, नमी प्रबंधन, अंतर फसल खेती और वैकल्पिक फसल पैटर्न पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। सुपर्णा सेकिया के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस बीच श्री चौहान ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी की 1 जुलाई को आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर शुरुआत होगी। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण के साथ हुई बैठक के दौरान ये बात कही। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के करसियोंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की कि राज्य पुलिस बल में भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी, जिससे बड़ी संख्या में गोरखा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य भर्ती में कम से कम 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने आज स्वास्थ्य सेवा, पेयजल, तकनीक, डिजिटल कनेक्टिविटी और सुशासन से जुड़े कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी। इसके अंतर्गत नागपुर में हाई एनर्जी मेडिकल साइक्लोट्रॉन प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। मध्य भारत की ये पहली परियोजना है जिससे अलग अलग बीमारियों की जाँच और उपचार बेहतर होने की उम्मीद है। मंत्रिमंडल ने ग्रामीण इलाकों में पीने के पानी की कमी को दूर करने के लिए महाराष्ट्र ग्रामीण पेयजल नीति तथा नवाचार और नई प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र अनमैन्ड सिस्टम पॉलिसी को मंजूरी दी। महाराष्ट्र में जून के पहले चरण में सामान्य से 26% ही बारिश हुई है। राज्य सरकार ने किसानों को सलाह दी है कि वे जल्दबाजी में बुआई न करें। सरकार ने किसानों से आग्रह किया है कि वे बुआई का काम शुरू करने से पहले बारिश की स्थिति पर ध्यान दें। पेयजल और स्वच्छता विभाग ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिला अधिकारियों के साथ पेयजल संवाद का आयोजन किया। इसमें वरिष्ठ अधिकारी, जिला अधिकारी, डिप्टी कमिश्नर और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के जल जीवन मिशन के डायरेक्टर शामिल हुए। इसका उद्देश्य जल के जीवन मिशन 2.0 के लागू होने की रफ्तार बढ़ाने और बेहतरीन

0: तौर तरीकों पर चर्चा करना था। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आज डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्वगणना की प्रक्रिया पूरी करके जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत की। जनगणना 2027 भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना है और ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रशासनिक तथा सांख्यिकी कार्य है जिसे पूरी तरह से ऐप आधारित पेपरलेस सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस पोस्ट का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि संघ लोक सेवा आयोग UPSC प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया है। पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक इकाई ने कहा है कि ये दावा निराधार है। इकाई ने कहा है कि परीक्षा के प्रश्न पत्र देश भर से चयनित संबंधित विषयों के विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत के आधार पर भारत में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज बात आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार की शून्य सहिष्णुता नीति की।
1: पिछले वर्ष 6 और 7 मई की मध्य रात्रि को भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट किया कि यदि आतंकवाद किसी देश की नीति का हिस्सा बनेगा तो उसका सीधा और सशक्त जवाब दिया जाएगा। इस ऑपरेशन के जरिए भारतीय सेना ने लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों के ठिकानों को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थित 9 प्रमुख आतंकवादी लॉन्च पैडों को नष्ट कर दिया। इस अभियान में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। वहीं 9 और 10 मई को भारत ने इतिहास रचते हुए परमाणु हथियार युक्त किसी देश के 11 एयरबेसों पर एक ही अभियान में प्रहार करने वाला पहला राष्ट्र बनने का गौरव प्राप्त किया। इस कार्रवाई के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान वायुसेना के लगभग 20% बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में जम्मू कश्मीर में 15वीं कोर के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकारी की खुफिया क्षमता और समन्वय की सराहना की।
2: इंडिया फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ,
3: भारत ने मजबूत स्थिति में होने के बावजूद जिम्मेदार लोकतंत्र और परमाणु संपन्न देश होने के नाते उनकी इस अपील को स्वीकार कर लिया। इस तरह ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकी देश को कड़ा सबक सिखाया कि भारत पर किसी भी आतंकी कृत्य को बख्शा नहीं जाएगा।
2: नो टेरर एक्ट इन इंडिया वुड गो अनपनिश्ड।
1: वहीं 7 पड़ोसी देशों से लगी 15,000 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत आज नेशन फर्स्ट के सिद्धांत पर आधारित प्रभावी विदेश नीति का पालन कर रहा है। सिलचर के प्रोफेसर अनूप कुमार डे ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि
4: 263 में से ज्यादातर हिस्सों में इंटरनेशनल जो बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ फेंसिंग हो गया है, उसके कारण न केवल वहां से जो अनुप्रवेश है उसमें रोक लगी है, उसके साथ साथ वहां से जो इलीगल ट्रेड्स होता था वो भी बंद हुआ है।
1: नरेंद्र मोदी सरकार आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाकर देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया के सर्वोच्च राजकीय सम्मान द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया जाना देश के लिए अत्यंत गौरव की बात है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि ये देश में प्रधानमंत्री द्वारा किए गए कल्याणकारी कार्यों को मान्यता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारत और जापान ने जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्रवाई, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी तथा सतत विकास पहलों पर सहयोग बढ़ाने के लिए पेरिस समझौते के अंतर्गत संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र के कार्यान्वयन नियमों को अपनाया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार JCM के लिए पिछले वर्ष दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित सहयोग ज्ञापन के बाद इस वर्ष 8 जून को कार्यान्वयन नियमों को अपनाया गया। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत इसराइल को लेबनान से पीछे हटना होगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराखची ने आज कहा कि दक्षिणी लेबनान पर इसराइल का निरंतर कब्जा अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौता ज्ञापन का उल्लंघन है। अमेरिका ने अभी तक

0: नहीं किया है कि लेबनान अंतिम समझौते का हिस्सा है या नहीं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वह परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश करता है तो भयानक तबाही मच जाएगी। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन से इतर कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री ट्रंप ने कहा कि प्रस्तावित समझौते में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होंगे। मौसम विभाग ने कल उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में उत्तर पूर्वी भारत, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा हो सकती है। अगले 4 से 5 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने का अनुमान है। भारतीय तलवारबाजी संघ ने 26वीं सीनियर एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। भारत पहली बार इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। 19 से 24 जून तक दिल्ली में आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में 30 से अधिक देशों के शामिल होने की उम्मीद है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियॉन में G7 शिखर सम्मेलन के उच्च स्तरीय कार्य सत्र में भाग लिया। वे आज रात कनाडा तथा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स के पुनरुद्धार की घोषणा की। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I'm Saira Mujtaba with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi participates in G7 summit in Evian, France, also to hold bilateral meetings tonight with heads of Canada, UK and UAE to meet US President tomorrow. Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan holds high-level meeting to review preparations for this Kharif season. West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari announces Eastern Frontier Rifles will soon be revived and over 1,000 Gorkha youths to be recruited. India and Japan adopt rule of implementation for joint crediting mechanism under Paris Agreement to boost cooperation on greenhouse gas emission reduction and sustainable development initiatives. Iran says deal to end war with US would also require Israel to withdraw from Lebanon. IMD forecasts thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds over North India tomorrow. And Indian squad announced for Senior Asian Fencing Championships 2026. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi participated in a high-level working session at the ongoing G7 summit in Evian, France today. The session themed Forging New Partnerships and Rebuilding International Solidarity brought together leaders of the G7 nations, partner countries, and senior representatives from the World Bank and the African Development Bank. The meeting began shortly after French President Emmanuel Macron formally welcomed Prime Minister Modi and other participating leaders. Following a group photograph, PM Modi shared the picture on social media, stating that India and the G7 countries would continue to work closely to promote global prosperity, sustainability, and human well-being. Our correspondent Ankit Kumar, who is covering the Prime Minister's G7 visit, joins us live from Evian for the latest updates. Well, Ankit, what are the key outcomes India expects from G7 discussions?
2: Yes, Saira. India is looking at this G7 summit as an important opportunity to advance both its national interests as well as priorities of the global south. From India's standpoint, one key outcome would be deeper cooperation in areas such as trade, technology, innovation and resilient supply chains, particularly at a time when countries are seeking reliable economic partners. Another important area is collaboration on emerging technologies, including artificial intelligence, where India is increasingly playing a significant role in global discussions. At the same time, India is expected to push for greater international focus on issues that directly affect developing nations, including sustainable development, climate finance, energy security, and inclusive economic growth. The summit also provides an opportunity for India to strengthen bilateral partnerships

0: women were abused, sexually abused in party offices, all the details which are now coming up, coming out about student union offices, that those were actually houses of illicit pleasure.
1: Yeah.
0: So this is the kind of architecture you had put into place to stay in power. Obviously, people won't accept.
1: So Kanchanji, going forward, West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari has now announced a series of investigations. You know, he has set up committees to look into excesses across the spectrum. One is what you just said, and also the extortion rackets, the cut money rackets that were going on. That will help.
0: It is important that there should be fair investigation, fair prosecution, and fair justice. Because अगर आपने जो जिन्होंने भी ये गलतियां की हैं, ये अन्याय किया है, इनको अगर सजा नहीं मिलता है, if they are not punished, then tomorrow you will find another set of exploiters coming into play. So ये जरूरी है. दूसरी बात जो है, आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि जो डिटेल्स अब उभर के आ रही हैं, किस किस्म की एक्सप्लॉयटेशन होती थी, किस किस्म का तोलाबाजी हो रहा, किस किस्म का कट मनी. यू सी, दीज आर ऑल थ्री थिंग्स. तोलाबाजी इज कोई अगर रेड़ी भी लगाता है, ठेला लगाता है, उसका दिन में 100 रुपए का, या कोई ऑटो चलाता है तो उसका दिन में 100 रुपए का रोजगार होता है, तो आप उससे जाकर 50 रुपए उगा लीजिएगा. दैट इज तोलाबाजी. कट मनी है कि अगर कोई काम हो रहा है, सरकार काम करवा रही है, पंचायत का काम है, कुछ है, जो भी है, उसमें जो ठेका जिसको मिल रहा है, रास्ता बनाने का, ड्रेन बनाने का, टैप लगाने का, आप उससे उसका जो कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट है, उसका एक परसेंटेज आप उससे निकाल लीजिएगा, रंगदारी टैक्स जिसे कहते थे. सो दैट वाज कट मनी. एंड देन यू हैड सिंडिकेट्स. आप घर बना रहे हैं तो आपको अपना ईंटा, बालू, सीमेंट, लोहा पार्टी के लोगों से खरीदना पड़ेगा, और उन्हीं के रेट पर खरीदना पड़ेगा, उनका जो ब्रांड है, उनका जो भी है, वही लेना पड़ेगा, आपका कोई इसमें ऑप्शन नहीं है. या आप अपना घर बेच रहे हैं, समझिए आपके पास मकान है जिसका वैल्यू 10 करोड़ है, वो लोग आकर बोलेंगे, सिंडिकेट कहेगी, जी ये मकान हम लोग तय करेंगे, आप कितने में बेचोगे, किसको बेचोगे, और 1 करोड़ का बिकवाएंगे, बाकी 9 करोड़ से वो लोग आधा 4.5 करोड़ अपने जेब में ले लेंगे.
1: So an absolutely exploitative
0: system. It was not a government. It was a monumental, क्या कहें? It was a factory of corruption. It was an industry of corruption. It was not a government.
1: एक आखिरी चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी. अपने विक्ट्री स्पीच में प्रधानमंत्री ने May 4 को एक बात का जिक्र किया था. उन्होंने कहा था कि इंडिया की जो गोल्डन एज जब थी, तो 3 भाग हमारे देश के उस गोल्डन एज के पिलर्स थे, अंग, बंग और कलिंग. तो अंग मतलब बिहार पहले भाजपा की विक्ट्री में आ चुका था, उसके बाद ओडिशा भाजपा जीत चुकी थी, और अब बंगाल की बारी थी, वो अब May 4 को रिजल्ट में हो गया. तो कितना इम्पोर्टेंट आप इस स्टेटमेंट को मानते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि विकसित भारत के स्वप्न को पूरा करना है तो ये 3 भागों को विकसित करना जरूरी है, क्योंकि ये पिछड़ गए हैं भारत की विकास यात्रा में.
0: ये बात सही है, और अंग बंग कलिंग जो आप कह रहे हैं, बट उसमें आप असम को भी जोड़िए, जो अपने जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं उनको भी जोड़िए. और जब तक ईस्ट में डेवलपमेंट नहीं होगा, जब तक ईस्ट की इकोनॉमिक कहानी एक कॉम्पिटिटिव स्टोरी नहीं बनेगी, तब तक भारत अपने आप को विकसित भारत नहीं कह पाएगा. अगर आप भारत के मानचित्र को देखें, वेस्ट इंडिया काफी डेवलप्ड है, साउथ इंडिया भी काफी डेवलप्ड है, ईस्ट इंडिया बस एक ही जगह रह जाता है जहां पर अभी तक कुछ खास काम नहीं हो पाया. मिडिल इंडिया, आप अगर मध्य प्रदेश को देखें, मध्य प्रदेश की जो रिकवरी स्टोरी है, बीमारू प्रदेश से आज कहां पहुंच गई है. अगर आप छत्तीसगढ़ को देखें, नया प्रदेश है और इतनी डिप्राइव्ड जोन थी कि उसको अलग स्टेट बनाना पड़ा, आज छत्तीसगढ़ कहां पहुंच गया, और वेस्ट बंगाल वहीं का वहीं पड़ा रह गया. तो हमें आगे का देखना पड़ेगा, एंड वेस्ट बंगाल कैनॉट जस्ट बी अ पोटैटो इकोनॉमी. That we produce the country's most largest amount of potatoes.
1: Like you heard Kanchan Gupta ji, that the destiny of India is inextricably linked to the destiny of Bengal, because you would recall that it was from Bengal that the British also began experimenting with their divide and rule policy, because they realized very early that if they have to capture the soul of India, they must first break Bengal. So that's the importance of West Bengal to the fate and destiny of our country. Thanks for joining us, Kanchan ji.
0: Thank you.

0: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का उमंग कार्यक्रम में स्वागत है। आप सबको विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ जिसे हमें भेजा है
2: कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल रंजीत कौर जयप्रकाश राहुल प्रियंका और मन्नत जी ने। लिखते हैं
3: मानव की इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं होती
2: जी।
3: एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जाग जाती है। हमें अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना चाहिए और जो मिल जाए उसी में संतोष करना चाहिए।
2: धन्यवाद आपका इस सुंदर विचार के लिए। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
3: तो पहला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी।
2: कुतुबपुर तहसील जिला हांसी हरियाणा से संदीप वर्मा जी।
3: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी ने लिखा है
2: सप्रेम नमस्ते जी। गर्मी की छुट्टियों में बच्चे पेड़ पौधे लगाना, पक्षियों को दाना खिलाना, डायरी लिखना और दादा दादी नाना नानी के यहाँ जाना कार्य कर सकते हैं।
3: आगे आप लिखते हैं सर अजीत जी और मैडम विमलेश जी, उमंग कार्यक्रम में गर्मी से संबंधित विषय पर जानकारी एवं जो अन्य कार्यक्रम सुनाए जा रहे हैं बेहद पसंद आ रहे हैं। कार्यक्रम सुनकर गर्मी में भी दिल को ठंडक का एहसास हो रहा है
2: जी।
3: आपने यहीं पर विराम नहीं दिया, आपने आगे लिखा है
2: भारत के वीर सेनानियों पर आधारित कार्यक्रम की श्रृंखला वीर गाथा उमंग कार्यक्रम में सुनवाई जा रही है वो प्रशंसा योग्य है। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल जी एवं लांस नायक अलवर टिक्का जी पर केंद्रित कार्यक्रम सुनकर हमारी आंखें नम हो गईं। कार्यक्रम बेहद पसंद आया। ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए समस्त उमंग टीम का हम दिल से आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद आप सभी श्रोताओं को। और प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए।
3: तो विमलेश जी अब ये बताइए कि ये भी जानिए श्रृंखला में आज हमारी चर्चा का विषय क्या रहेगा।
2: अजीत जी इस सप्ताह हम पूरे विश्व परिवार की अनेक रोचक परंपराओं की चर्चा करेंगे
3: जी।
2: आज की चर्चा का विषय होगा जापान का चाय समारोह, इसे टी सेरेमनी भी कहा जाता है और जापानी भाषा में इसे चानो यू कहते हैं। ये दुनिया की सबसे सुंदर और अनुशासित परंपराओं में से एक है
3: जी। हाँ श्रोताओं, जापान की चाय परंपरा केवल चाय पीना नहीं लेकिन सम्मान, शांति, अनुशासन और व्यवहार की सुंदरता का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो आइए जानते हैं विमलेश जी से कि ये परंपरा जापान में कब शुरू हुई
2: जी। अजीत जी हम सब

0: निकलते हैं कि चाय की शुरुआत चीन से हुई है। 9वीं शताब्दी की बात है जब कुछ बौद्ध भिक्षु चीन से चाय की पौध लेकर जापान आए और तब चाय का प्रचलन जापान में भी शुरू हुआ।
1: लेकिन विमलेश जी, ऐसी कौन सी बातें हैं जो जापानी चाय समारोह को इतना विशेष बनाती हैं कि हम उसकी चर्चा कर रहे हैं?
0: जी, जापान में चाय पीना एक विशेष अर्थ रखता है।
1: जैसे
0: कि वहाँ चाय पीना एक औपचारिक और सामान्य बात नहीं है। इस समारोह में बहुत सी बातों का खास ध्यान रखा जाता है। आइए अपने श्रोताओं को कुछ जापानी शब्दों से भी परिचित कराते हैं जो वहाँ की चाय परंपरा को खास बनाते हैं।
1: जी, सचमुच चाय पीने के संदर्भ में इन जापानी शब्दों को जानना बड़ा रोचक रहेगा।
0: अजीत जी, भिक्षुओं ने इसे आध्यात्मिकता से जोड़ दिया और इसके कुछ नियम बनाए।
1: तो क्या क्या नियम है इसके?
0: जापान का चाय समारोह 4 मूल सिद्धांतों पर आधारित है। पहला सिद्धांत है वा, यानी हारमोनी या सामंजस्य।
1: और दूसरा शब्द क्या है?
0: दूसरा शब्द है केई,
1: जी,
0: यानी रिस्पेक्ट या सम्मान।
1: और श्रोताओ, तीसरा शब्द है सेई, यानी पवित्रता या प्यूरिटी। और चौथा शब्द है याकू, यानी आंतरिक शांति या इंटरनल पीस।
0: श्रोताओ, इन 4 सिद्धांतों पर टिकी है जापानी चाय परंपरा, जिससे हम स्पष्ट अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितनी अर्थपूर्ण है। तो जी, अब करते हैं साझा कुछ और रोचक बातें जो जापानी चाय परंपरा में अनिवार्य मानी जाती हैं।
1: जी हाँ, तो श्रोताओ, चाय समारोह में अतिथि सर झुकाकर अभिवादन करते हुए चाय का कटोरा दोनों हाथों से लेते हैं। ये सम्मान दर्शाने का प्रतीक है।
0: जी, एक और खास बात यह है कि इस परंपरा में अतिथि चाय का कटोरा लेकर कटोरे को मेजबान की तरफ देकर हाथ को हल्का सा घुमाता है। इस कार्यक्रम में इस बात का बहुत ध्यान रखा जाता है कि अतिथि कहाँ बैठेंगे, उन्हें कैसे आराम दिया जाए, ये भी ध्यान दिया जाता है कि प्याला कैसा होगा।
1: जी, और अब एक जानकारी और आपको दे दें कि समारोह का आयोजन पारंपरिक तौर पर कहाँ होता है।
0: ये समारोह अक्सर एक शांत टी हाउस या चाय कक्ष में होता है जो लकड़ी और बांस से बना होता है। फर्श पर परंपरागत चटाई बिछी होती है, बाहर छोटा सा बागीचा भी हो सकता है। चाय घर या कक्ष को जापानी में चा शित्सु कहा जाता है। पारंपरिक रूप से चाय पार्टी में किमोना पहना जाता है। चाय कक्ष के मार्ग में रंगीन छोटे छोटे पत्थर मार्गदर्शक के रूप में लगाए जाते हैं।
1: यानी कुल मिलाकर यह चाय समारोह सादगी, विनम्रता और प्रकृति के सौंदर्य का मेल कहा जा सकता है।
0: जी
1: विमलेश जी, हमने ये तो बताया ही नहीं कि जापानी चाय समारोह में कौन सी चाय परोसी जाती है।
0: अरे हाँ, ये तो हम भूल ही गए थे। श्रोताओं, इस समारोह में माचा चाय दी जाती है। ये चाय की हरी पत्तियों को पीसकर पाउडर की तरह बनाई जाती है। जहाँ तक इसके स्वाद की बात है, स्वाद थोड़ा कड़वा हो सकता है।
1: कड़वा हो सकता है, तो इसीलिए सबसे पहले एक जापानी मिठाई दी जाती है जिसे वागाशी के नाम से जाना जाता है। पूरे जापान में ये मिठाई बहुत ही लोकप्रिय है। और श्रोताओं, एक खास बात आपको बताएं, प्रत्येक मिठाई बिल्कुल कलात्मक दिखाई देती है।
0: जी, तो श्रोताओं, जापान की चाय परंपरा हमें सिखाती है कि चाय पीना मात्र चाय पीना ही नहीं है, बल्कि वर्तमान क्षण को पूरी शांति और सुंदरता के साथ जीना है।
1: तो ये चाय समारोह हमें संदेश देता है कि साधारण सी चीज यानी एक कप चाय भी सम्मान, परस्पर सामंजस्य और व्यस्त जीवन में गहरी शांति का अनुभव बन सकती है।
0: जी, तो श्रोताओं, कैसी लगी हमारी जानकारी, ये जरूर बताइएगा। और अब सुनिए आज का प्रश्न। प्रश्न है,
1: चाय समारोह को जापानी भाषा में क्या कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: चाय समारोह को जापानी भाषा में क्या कहते हैं?
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर।
0: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in।
1: और हाँ,
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: जी, तो चलिए अब रुख करते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की ओर। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है संवदिया।
0: ये कार्यक्रम हमें उस समय की याद दिलाता है जब इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम नहीं थे। उन दिनों में संवाद या कोई सूचना लेकर जाने वाले को संवदिया कहा जाता था। संवदिया मात्र संदेश या पत्र वाहक ही नहीं थे, लेकिन समाज के महत्वपूर्ण सेतु थे जो एक दूसरे को जोड़ते थे। कार्यक्रम एक मार्मिक नाटक द्वारा प्रस्तुत किया गया है।
2: आजकल तो घर बैठे ही कहीं से कहीं खबर भेज सकते हैं और वहां का कुशल संवाद मंगवा सकते हैं। फिर आज बड़ी हवेली से, बड़ी बहुरिया की ओर से हरगोबिंद संवदिया की बुलाहट क्यों हुई?
3: हाँ, लो आ गई बड़ी हवेली। निश्चय ही कोई गुप्त समाचार ले जाना है। चांद सूरज को भी ना मालूम हो, परिवा पंछी तक न जाने। हाँ।

0: आगू बड़ी बहुरिया
1: आ गए भैया।
0: हां
1: लो ये पीढ़ी सर का लो, कुछ देर बैठ जाओ। हां
0: बड़ी हवेली तो अब नाम मात्र की ही बड़ी हवेली है, जहां नौकर नौकरानियों की भीड़ लगी रहती थी। आज हवेली की बड़ी बहुरिया अपने हाथ से सूपा में अनाज लेकर भटक रही है। ओह, कहां गए वो दिन। बड़े भैया क्या गए, जैसे सब खेल खत्म हो गया।

0: तीनों भाइयों ने आपस में झगड़ा शुरू किया। रैयतों ने जमीन पर दखल कर लिया। फिर तीनों भाई गांव छोड़कर शहर में जा बसे। रह गई बड़ी बहुरिया। कहां जाती बेचारी?
1: अरे ये मुदियाइन बूढ़ी काकी काहे बड़बड़ा रही है?
2: आए देखो बड़ी बहुरिया, उधार का सौदा खाने में बड़ा मीठा लगता है पर दाम देते समय कड़वा। मैं तो आज दाम लेकर ही उठूंगी यहाँ से। हाँ
3: अरे मोदियाइन काकी, बाकी बकाया वसूलने का ये काबुली कायदा तो तुमने खूब सीखा है।
2: क्या कहा? काबुली कायदा? फिर काबुली का नाम लिया तो अच्छा ना होगा, कहे देती हूँ। हाँ
3: लो।
2: देखो जी, मैं फिर आऊंगी और अब की बार उधार लिए बिना हिलूंगी नहीं यहाँ से, कहे देती हूँ। बड़े आ जाते हैं उधार लेने, मांगने जाओ तो वापस नहीं करते।
3: और हाय
4: हर गोविंद भाई।
3: हाँ?
4: तुमको एक संवाद ले जाना है आज ही। बोलो चाहोगे ना?
3: कहाँ बड़ी बहुरिया?
4: मेरी माँ के पास।
3: माँ के पास? कहिए क्या संवाद है?
4: माँ से कहना मैं भाभी भाभियों की नौकरी कर अपना पेट पालूंगी, लेकिन यहाँ अब नहीं रह सकूंगी। बथुआ साग खाकर कब तक जीऊं? किस लिए, किसके लिए?
3: बड़ी बहुरिया,

0: हर गोविंद भैया, ये 5 का नोट ही बचा है, अब पूरा राह खर्च भी नहीं जुटा सकी। आने का खर्च माँ से मांग लेना।
1: ना ना बड़ी बहुरिया, राह खर्च देने की जरूरत नहीं है, मैं इंतजाम कर लूंगा।
0: तुम कहाँ से इंतजाम करोगे? और सुनो, लगता है सुनते ही भैया तुम्हारे साथ आ जाएंगे।
1: अरे वो तो ठीक है, लेकिन मैं इंतजाम कर लूंगा बहुरिया, आप फिकर मत करिए। ये नोट रखिए,
0: अरे
1: हारे गाढ़े काम आएंगे। अच्छा, मैं आज 10 बजे की गाड़ी से ही निकल जाऊंगा।
0: अच्छा, मैं तुम्हारी राह देखती रहूंगी।
1: अच्छा, चलता हूँ।
2: संवाद यानी संदेश पहुंचाने का काम सहज नहीं होता। प्रत्येक शब्द को याद रखना, जिस सुर और स्वर में संवाद सुनाया गया है ठीक उसी ढंग से सुनाना बहुत कठिन है। बिना मजदूरी लिए ही जो गांव-गांव संवाद पहुंचा है उसको और क्या कहेंगे, निठल्ला, कामचोर, पेटू और क्या क्या नहीं। पर सच ये भी है कि गांव में कौन ऐसा है जिसके घर की माँ बहु बेटी का संवाद हरगोबिंद ने नहीं पहुंचाया है।

0: भाई साहब।
1: हाँ
0: थाना बिहपुर में ये गाड़ी रुकती है या नहीं?
2: अरे भैया, थाना बिहपुर में सभी गाड़ियाँ रुकती हैं।
0: अच्छा,
2: हाँ, और मैं भी वहीं पर उतरूंगा।
0: अच्छा,
2: घबराओ मत, बता दूंगा।
0: तो कितना समय और लगेगा?
2: अरे बस थोड़ी दूर है, आने

0: है ये नहीं?
1: अरे भैया थाना बिहपुर में सभी गाड़ियां रुकती हैं।
0: अच्छा,
1: हाँ, और मैं भी वहीं पर उतरूंगा।
0: अच्छा,
1: घबराओ मत, बता दूंगा।
0: तो कितना समय और लगेगा?
1: अरे बस थोड़ी दूर है, आने वाला है।
0: हाँ?

0: थाना बेहपुर पर गाड़ी पहुंची तो हरगोबिंद का जी भारी हो आया। बड़ी बहुरिया का संवाद सुनाते समय वो अपने कलेजे को कैसे संभालेगा। बड़ी बहुरिया के संवाद रह रह कर उसके कानों में गूंज रहे थे।
1: हरगोबिंद भाई, माँ से कहना भगवान ने आंखें फेर ली, लेकिन मेरी माँ तो है, किस लिए किसके लिए? मैं बथुआ साग खाकर कब तक जियूं, कब तक जियूं?
2: बड़ी बहुरिया, हम क्या करें?
0: हरगोबिंद का मन कलपने लगा। गांव की लक्ष्मी ही गांव छोड़कर चली जाएगी तो गांव में क्या रह जाएगा? किस मुंह से वो ऐसा संवाद सुनाएगा? ये सोचते सोचते हरगोबिंद गांव पहुंच ही गया।
3: माँ, माँ देखो, हरगोबिंद काका आए हैं।
4: पाए लागू माँ जी।
5: जीते रहो हरगोबिंद बेटा, क्या समाचार है?
4: जी, आपके आशीर्वाद से सब ठीक है।
5: मेरी बेटी का कोई संवाद?
4: संवाद? जी संवाद तो कोई नहीं।
5: हाँ?
4: बस मैं कल सिरसिया गांव आया था तो सोचा कि चलकर आप लोगों के दर्शन कर लूं।
5: तो तुम कोई संवाद लेकर नहीं आए हो?
4: जी नहीं, कोई संवाद नहीं। ऐसे ही बड़ी बहुरिया ने कहा है कि हाँ, अगर छुट्टी हुई तो दशहरे के समय गंगा जी के मेले में आकर माँ से भेंट मुलाकात कर जाऊंगी।
5: सो तो है।
4: अरे छुट्टी मिलेगी तो कैसे, सारी गृहस्थी बड़ी बहुरिया के ऊपर ही तो है।
5: अरे हरगोबिंद, मैं तो बबुआ से कह रही थी कि जाकर अपनी दीदी को लिवा ला, यहीं रहेगी। अरे वहाँ अब क्या रह गया है उसका? जमीन जायदाद तो सब चली गई, तीनों देवर भी शहर जाकर बस गए, कोई खोज खबर भी नहीं लेता उसकी। अब तो मेरी बेटी अकेली रह गई है।
4: नहीं नहीं नहीं नहीं माँ जी, जमीन जायदाद अभी भी कुछ कम नहीं है। टूट फूट गई है तो भी है तो आखिर बड़ी हवेली। बड़ी बहुरिया का गांव ही परिवार है, हमारे गांव की लक्ष्मी है बड़ी बहुरिया, और गांव की लक्ष्मी गांव छोड़कर कैसे जाएगी माँ जी?
5: हाँ सो तो है। चलो अच्छा है बबुआ, अब थोड़ा जलपान कर लो।
4: अच्छा अच्छा माँ जी।
5: अरे हरगोबिंद, क्या सोच रहे हो? कुछ खाते क्यों नहीं बबुआ?
0: हरगोबिंद ने थाली की ओर देखा। थाली में दाल भात, तीन किस्म की भाजी, घी, पापड़, अचार, इतना सब कुछ। उधर बड़ी बहुरिया का बथुआ साग उबाल कर खाना। हरगोबिंद के मुंह में एक निवाला भी न जा सका। वो सोचने लगा, ये उसने क्या किया, वो किस लिए आया था, वो झूठ

0: क्यों बोला? ये सोच सोच कर रात भर हरगोबिंद को नींद ही नहीं आई। उसकी आंखों के सामने बड़ी बहुरिया बैठी रही, सिसकती रही। उसने जी कड़ा किया, वो संवदिया है, उसका काम है सही सही संवाद पहुंचाना। उसने निर्णय लिया कि वो सुबह उठते ही बूढ़ी माता को बड़ी बहुरिया का सही संवाद अक्षर अक्षर सुना देगा। अगले दिन सुबह उठते ही वो माँ जी के पास जा पहुंचा।
1: माँ जी, अब आज्ञा दीजिए।
2: अरे,
1: मुझे पहली गाड़ी से वापस जाना होगा, कई दिन हो गए। अच्छा माँ जी, अब पाए लागू।
2: जीते रहो बेटा,
1: अब चलता हूँ।
3: क्यों भाई, रहा खर्च तो है?
1: अरे भैया जी, आपकी दया से किसी बात की कमी नहीं है।
3: अच्छा
1: अच्छा, राम राम।
3: राम राम
1: राम राम।

0: हरगोबिंद के पास तो बस कटिहार तक जाने के पैसे थे। गाड़ी में बैठते ही उसकी हालत अजीब हो गई। वो कहाँ आया था, क्या करके जा रहा है? बड़ी बहुरिया को क्या जवाब देगा?
1: कटिहार आ गया। उतर लो, जाना है जलालगढ़। टिकट कटिहार तक का ही है। जलालगढ़ है 20 कोस दूर। हाँ? अरे बड़ी बहुरिया राह देख रही होगी, पैदल ही चलता हूं। बीस कोस की मंजिल भी भला कोई दूर की मंजिल है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान।

0: भूख से बेहाल, थकान से चूर, लड़खड़ाता हुआ हरगोबिंद बहुरिया के दरवाजे पर गिर पड़ा।
1: हरगोबिंद भाई आ गए? हाय, क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ?
2: बड़ी बहुरिया।
1: हरगोबिंद भाई लो एक घूंट दूध ले लो, मुंह खोलो। हाँ लो, आप पी लो, पी लो, शाबाश शाबाश। हाँ शाबाश, अब जी कैसा है?
2: बड़ी बहुरिया मुझे माफ कर दो।
1: कहे?
2: मुझे माफ कर दो,
1: पर
2: मैं तुम्हारा संवाद न कह सका। तुम गांव छोड़कर मत जाओ।
1: हरगोबिंद भाई,
2: मैं तुमको कोई कष्ट नहीं होने दूंगा, कोई कष्ट नहीं। मैं तुम्हारा बेटा। बड़ी बहुरिया तुम सारे गांव की माँ हो, तुम्हारा सब काम करूंगा मैं।
1: हरगोबिंद भाई तुम,
2: मैं अब हम निठल्ला बैठा नहीं रहूंगा। बोलो बोलो बड़ी माँ, तुम गांव छोड़कर चली तो नहीं जाओगी? नहीं जाओगी ना? नहीं जाओगी ना?
1: नहीं नहीं नहीं नहीं जाऊंगी।

0: moisture from the light rains that occasionally fall. The major feature of all deserts is, of course, dryness and variations of temperature. In humid climates, the moisture in the air acts like a blanket and protects the earth's surface.
1: ଶୁଣୁଥିଲେ CIT NCERT ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉମଙ୍ଗର 1302 ଅଧ୍ୟାୟ ଆକାଶବାଣୀ ଭବାନୀପାଟଣା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରେଲିକୁ ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ
2: ନମସ୍କାର ଆକାଶବାଣୀ ସମାଚାର କେ ସାଥ ମେ ସର ଫିରୋଜି प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के एक उच्च स्तरीय कार्यसत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बदलती वैश्विक परिस्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के लिए विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत हमेशा मानवता पहले के सिद्धांत पर चलता है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, मिशन लाइफ और एक पेड़ माँ के नाम जैसे भारत के प्रयासों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत की सोच सुधैव कुटुंबकम यानी विश्व एक परिवार है पर आधारित है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के समय भारत हमेशा जरूरतमंद देशों की सहायता के लिए आगे रहा है। प्रधानमंत्री ने वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए संवाद, कूटनीति तथा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के सम्मान पर जोर दिया। शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा प्रधानमंत्री मोदी का व्यस्त राजनयिक कार्यक्रम भी है। वो कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। आज रात वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित भव्य रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की कल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात होगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के साझा दृष्टिकोण ने भारत इनोवेट्स की आधारशिला रखी, जो भविष्य के लिए एक परिवर्तनकारी मंच बन गया है। श्री गोयल ने ये बात फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स के समापन समारोह में कही। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में उच्च स्तरीय कृषि समीक्षा बैठक में चालू खरीफ सीजन के लिए देश भर में की गई तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कपास उत्पादन बढ़ाने, दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और कम वर्षा वाले जिलों के लिए अग्रिम आकस्मिक योजनाओं पर विशेष बल दिया। श्री चौहान ने कहा कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी की 1 जुलाई को आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर शुरुआत होगी। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण के साथ हुई बैठक के दौरान ये बात कही। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के कुर्सियोंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की कि राज्य पुलिस बल में भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी, जिससे बड़ी संख्या में गोरखा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य भर्ती में कम से कम 30% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र पुलिस की कानून प्रवर्तन क्षमताओं को बढ़ाने और उभरती सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए 733 करोड़ रुपए से अधिक की आधुनिकीकरण योजना को मंजूरी दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये परियोजना संयुक्त वित्त पोषण मॉडल के माध्यम से लागू की जाएगी। इसमें केंद्र सरकार कुल लागत का 60% और राज्य सरकार 40% वहन करेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट परीक्षा से पहले अभिभावकों और उम्मीदवारों को जालसाजों से सावधान रहने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में NTA ने कहा कि टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जालसाज पुनर्परीक्षा का प्रश्न पत्र साझा करने का दावा करके रुपयों की मांग कर रहे हैं। NTA ने स्पष्ट किया है कि पुनर्परीक्षा का कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौते पर हस्ताक्षर शुक्रवार को लुसेन शहर के पास

0: ये आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही हैं अनुभा रोहतगी।
1: नमस्कार। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार देश के नेतृत्व की जिम्मेदारी संभाली थी। तब से अब तक इन 12 सालों में भारत में कई बड़े बदलाव हुए हैं और हर क्षेत्र में अनगिनत उपलब्धियां हासिल की गई हैं। आकाशवाणी की इस विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के जन कल्याण के में आज हम पर्यावरण के क्षेत्र में हुई उपलब्धियों के बारे में बात कर रहे हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव। मंत्री जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: भूपेंद्र जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने हाल ही में 12 वर्ष पूरे किए हैं। इस पूरी यात्रा में, इन 12 सालों में आप किन बदलावों को सबसे ज्यादा परिवर्तनकारी मानते हैं जिन्होंने भारत में गुड गवर्नेंस की एक नई परिभाषा गढ़ी है?
2: आपने जो शुरुआत में दो शब्द कहे थे
1: जी,
2: विश्वास और जन कल्याण
1: जी,
2: मुझे लगता है 12 साल की कहानी विश्वास और जन कल्याण की है। विश्वास इस बात का कि सरकार ऊपर से जो 100 रुपये भेजेगी वो जनधन खाते में पूरा 100 रुपया जाएगा, ये पहली बार हुआ है। वरना खुद देश के प्रधानमंत्री कहा करते थे कि हम 100 रुपया भेजते हैं 85 रुपया गायब हो जाते हैं। विश्वास इस बात का कि सरकार जिस प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेगी उसका उद्घाटन भी यही सरकार करेगी। 12 साल पहले जब प्रधानमंत्री जी आए और उन्होंने एक प्रगति नाम का कार्य शुरू किया तो कई सौ समय से पड़े हुए प्रोजेक्ट नहीं पूरे हुए
1: जी।
2: मध्य प्रदेश बुंदेलखंड में केन बेतवा प्रधानमंत्री जी के समय में पूरा हुआ, राजस्थान में ERCP प्रधानमंत्री जी के समय में प्रारंभ हुआ, या आपके ऊपर पुल बनाने का विषय हो या गुवाहाटी के पुल बनाने का विषय हो। तो दूसरा विश्वास कि सरकार जिसका उद्घाटन करेगी उसको जनता को समर्पित भी करेगी। तीसरा, जो लोगों का विश्वास है कि भारत का आत्मसम्मान और गौरव दुनिया में बड़ा है। फिर ऐसा जब अच्छा समय होता है तो आपकी परीक्षा भी ली जाती है।
1: बिल्कुल।
2: तो दुनिया में जब कोरोना की महामारी का संकट आया तो इस बात का विश्वास कि हम अपनी दवाई भी खुद ढूंढ सकते हैं और अपना रास्ता भी खुद तय कर सकते हैं। फिर भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनी तो इस बात का विश्वास कि हम जिस रास्ते पे चले हैं वह रास्ता विकसित भारत की ओर जा रहा है। और दूसरा जो शब्द आपने कल्याण कहा था, कल्याण
1: जी,
2: गरीब कल्याण, 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी के खाते से निकाला, 80 करोड़ लोगों को समय पर राशन पहुंचाने का काम किया, किसानों को सम्मान निधि देने का काम किया। और कल्याण के इस कार्य में जो कभी लोहिया जी 60 के दशक में कहा करते थे कि पानी और पखाना ये भारत के महिलाओं की इतनी बड़ी त्रासदी रही है कि उनको मीलों दूर से पानी लाना पड़ता है और अपनी इज्जत को बचाने के लिए अपने नेचुरल क्रिया को रोकना पड़ता है, घर घर शौचालय बनाने जैसा छोटा लेकिन एक लंबा कार्य, और जल जीवन मिशन को पहुंचाना। और इसलिए विश्वास और जन कल्याण ये 12 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और सफलता को बताता है।
1: भूपेंद्र जी, जलवायु संरक्षण के प्रयास के क्षेत्र में भारत एक बहुत बड़ी वैश्विक आवाज बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री मोदी खुद भी इसके बहुत बड़े पक्षधर हैं। तो आपके मुताबिक भारत ने विकास की अपनी जरूरतों और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी के बीच संतुलन कैसे बनाया है?
2: विषय ये उठता है कि हम वैश्विक आवाज किसकी बने? हम वैश्विक आवाज ग्लोबल साउथ की बने
1: जी।
2: तो जलवायु परिवर्तन के संकट की असमानता और असंतुलन क्या है? जलवायु परिवर्तन संकट की असमानता ये है कि जो विकसित देश हैं उन्होंने अपने स्पेस से ज्यादा धरती का कार्बन स्पेस घेरा हुआ है।

0: आज अगर वो पर्यावरणीय विषयों में विकासशील देशों को कुछ निर्देशित करना चाहते हैं तो पहले उनको जो उनका हिस्टोरिकल रॉन्ग है वो देना पड़ेगा
1: जी।
0: और भारत ने इसलिए अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में ग्लोबल साउथ की आवाज़ को प्रखरता के साथ उठाया है, लेकिन हमने ग्लोबल साउथ की आवाज़ को केवल लड़ने के लिए नहीं उठाया। प्रधानमंत्री जी हमेशा हमें निर्देशित करते हैं कि भारत दुनिया की जलवायु परिवर्तन वार्ताओं में समाधान का मार्ग प्रशस्त करे, समस्या ना बने
1: जी।
0: और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम, चाहे कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, अकाल सूखे और बाढ़ के कारण होने वाले दुष्परिणामों के कारण दुनिया में कैपेसिटी बिल्डिंग और नॉलेज शेयरिंग का विषय हो, चाहे इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक वैकल्पिक ऊर्जा जिसको नवकरणीय ऊर्जा कहते हैं
1: जी।
0: उसका विषय हो, चाहे जो कार्बन एमिशन जिन इंडस्ट्रीज से निकलता है उनके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए लीडरशिप फॉर इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन जैसा विषय हो, और चाहे बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जैसा विषय हो, तो भारत ने दुनिया में ग्लोबल साउथ की आवाज़ बन करके उनके हकों की बात करी है, क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम का हिस्सा बनकर और उसका नेतृत्व करके समाधान, नॉलेज शेयरिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग का विषय अपनाया है, और मिशन लाइफ और एक पेड़ माँ के नाम जैसे अभियान चलाकर ये समस्या हम सबकी समस्या है और अपनी अंतरचेतना को जगाकर अपना व्यक्तिगत योगदान क्या दे सकते हैं उसमें एक बड़ी भूमिका प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निभाने का कार्य किया है।
1: आपने अभी जो कुछ पॉइंट्स कहे हैं, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन की बात की, आपने नेट जीरो एमिशंस की बात की, इन पर एक एक करके हम चर्चा करेंगे, पर उससे पहले मेरा आपसे एक सवाल है कि प्रदूषण आज एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है, खासकर कि दिल्ली जैसे महानगरों में, और ये जो है वो हमारे पर्यावरण पर बहुत इसका बुरा असर पड़ रहा है। सरकार अपनी तरफ से इसके लिए कई प्रयास कर रही है, जैसे भी हमने हाल ही में देखा कि यूनियन कैबिनेट ने दिल्ली NCR में पुराने ट्रकों और बसों को फेज आउट करने के लिए एक स्कीम जो है अप्रूव की है, साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स EVs को बहुत बड़े पैमाने पर प्रमोट किया जा रहा है, आप खुद भी EV में ट्रैवल करते हैं, तो इन प्रयासों को आप कैसे देखते हैं?
0: नहीं, ये सकारात्मक प्रयास है, जनसंख्या के बढ़ते हुए दबाव, भौगोलिक परिस्थिति के कारण पर्टिकुलर समय में दिल्ली में वातावरण में प्रदूषण फैलता है
1: जी।
0: अभी तो आपको अच्छा लगा होगा कि मई तो हमारा क्लीनेस्ट डे रहा है, अखबारों में भी आया है
1: जी।
0: लेकिन जहाँ पर मनुष्य आधारित गतिविधियाँ होती हैं वहाँ PM 2.5 और PM 10, ये दो जो तत्व है, मतलब PM 2.5 में कार्बन, ओजोन, बाकी जो गैसेस निकलती हैं उद्योगों से, व्हीकल से, और PM 10 में जो डस्ट पार्टिकल होते हैं उसके कारण ये प्रदूषण फैलता है। और जब मौसम में ऐसी स्थिति आती है, विशेष रूप से दिल्ली में जब हवाएं चलनी बंद होती है और सर्दी होती है, और सर्दी भी हो हवा भी ना चले, तो वो जो वायु में जो तत्व है इसको एयर पार्टिकल कहते हैं, वो जम जाता है, और जमने के कारण वो एक वातावरण का जो AQI है उसको खराब करता है। तो इसका उपाय विभिन्न क्षेत्रों में है, व्हीकल पॉल्यूशन के स्तर पर क्लीन और फ्यूल की बात कही गई है, पुराने व्हीकल्स को समाप्त किया गया है, स्मार्ट ट्रैफिकिंग की ओर सरकार का ध्यान गया है, दिल्ली से कमर्शियल व्हीकल के लिए ईस्टर्न और वेस्टर्न पैरेलल एक हाईवे बना करके बड़ा ट्रैफिक वहाँ से निकालने की बात की गई है, मेट्रो का विस्तार करके सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने का काम किया गया है, इंडस्ट्री के मॉनिटरिंग के लिए हर इंडस्ट्री में OCM लगाने की बात की गई है, और उसके साथ ही साथ जो ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो अनधिकृत क्षेत्र में हैं उनको सख्ती से बंद करने की बात की गई है। उसके साथ ही दिल्ली के ग्रीनिंग के अभियान को चलाया गया है, डस्ट के लिए जो मैकेनाइज मशीन की जो सफाई है उसके लिए लगभग 100 से ज़्यादा मशीनें मंगाई गई हैं, फिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का काम किया है, फिर आर्टिकल जो P10 है इसका बड़ा कारण डस्ट है, तो कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन के लिए साइट्स को बनाने का काम किया गया है। इन सारे विषयों को करते हुए आज शाम को ही कृषि मंत्रालय में हमारी बैठक है कि पराली के बारे में अभी से प्रबंधन के विषयों के लिए बाकी राज्यों से बात करने की बात की गई है। दिल्ली के आसपास जो कॉरपोरेशंस हैं, चाहे गाजियाबाद हो, नोएडा हो, फरीदाबाद हो, सोनीपत हो, मानेसर हो, गुड़गावा हो या फिर अलवर हो, वहाँ के जो हमारे कॉरपोरेशंस हैं उनको अपना एडवांस में प्लानिंग बनाने को कहा है, व्हीकल पॉल्यूशन, इंडस्ट्री पॉल्यूशन, डस्ट कंट्रोल, कंस्ट्रक्शन एक्ट

0: एक्टिविटी, इन सब विषयों में एक अच्छे तरीके की नीति बनाने की बात की गई है और पब्लिक के सहयोग के लिए भी इस कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है।
1: जी, प्रधानमंत्री का एक संकल्प है भारत को विकसित भारत बनाना 2047 तक। इस विजन में सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक महत्वपूर्ण पिलर है, तो भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में आपकी मिनिस्ट्री यानी कि पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मिनिस्ट्री जो है, मैं कहूंगी कि सबसे अहम है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे?
0: सबसे पहले तो सतत विकास का अर्थ है कि विकास की धारा निरंतर चलती रहे, इसमें इम्बैलेंस ना है, कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी रहे। लेकिन हम धरती से जो संसाधन निकालते हैं उन संसाधनों का हमें वापस से पुनः उपयोग करना चाहिए, इसलिए हमारा मंत्रालय जो है सर्कुलर इकोनॉमी पे बल देता है। सर्कुलर इकोनॉमी में चाहे आपका इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से निकलने वाला पदार्थ हो, चाहे यूज्ड ऑयल से निकलने वाला पदार्थ हो, चाहे फ्लाई ऐश जो होती हैं उनके साथ बेकार फ्लाई ऐश का विषय हो, और ऐसे अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र जो कि हम पहले क्या करते थे, मेक टेक एंड वेस्ट, वो क्या करते थे, अब जो सर्कुलर इकोनॉमी है वो एक नए कंसेप्ट को लेकर चलती है, रिसाइकल रीयूज एंड रिप्रोड्यूस, है ना। तो उसके लिए रेगुलेशन के लिए हमारे मंत्रालय ने रेगुलेटरी मिनिस्ट्री के नाते सारे रूल्स के फ्रेमिंग करने का काम किया। दूसरा, जो एक लंबे समय से इंडस्ट्री में बात की जा रही थी कि भाई आप इंडस्ट्री चला रहे हैं, आपकी मॉनिटरिंग कौन करेगा, तो जैसे आपको अपना अकाउंट्स का ऑडिट देना पड़ता है, अब एनवायरमेंट ऑडिट की भी बात करी है और उनके ऑडिटर वो ऑडिट देंगे, ताकि हम जैसे आजकल रोज सुबह उठकर अपना इंसुलिन नाप लेते हैं ना कि हमारा आज कितना इंसुलिन है, हमारा आज कितना बीपी है, तो ये जो पर्यावरण का प्रदूषण भी एक किस्म का डायबिटीज ही है, इसके लिए अपना आपको एनवायरमेंट ऑडिट कराना चाहिए। और हमारे मंत्रालय ने रिफॉर्म्स के मानकों को काफ़ी सरल करने का काम किया है, ताकि लोग नियम कठिन होने के कारण नियम को तोड़ते हैं, नियम जब सरल होते हैं और कॉन्शियसनेस होती है उसके प्रति, अवेयरनेस होती है, तो लोग उसको अपनाने का काम करते हैं। तो सर्कुलर इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी का उपयोग, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन, देश के इको सेंसिटिव जोन का संवर्धन, देश में जो एंडेंजर्ड स्पीशीज है उनका प्रोटेक्शन, एक पेड़ माँ के नाम अभियान चलाकर धरती को हरा भरा बनाने का विषय, उसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन और कॉरपोरेट पार्टिसिपेशन को लेने के लिए ग्रीन क्रेडिट फंड जैसा प्रोग्राम, कैंपा के माध्यम से ग्रीन इंडिया मिशन पे कार्य, बायोडायवर्सिटी संरक्षण के लिए गांव-गांव में बायोडायवर्सिटी रजिस्टर बनाने का कार्य, इन सब विषयों को लेकर के हम कार्य कर रहे हैं।
1: शुरू में आपने बात की इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में फ्रांस के साथ मिलकर इसकी शुरुआत की थी और ये आज दुनिया की सबसे बड़ी क्लाइमेट इनिशिएटिव्स में से एक है। तो वैश्विक जलवायु संरक्षण के प्रयास और भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को मजबूत करने में इस तरह के पहल के बारे में आप क्या कहेंगे?
0: ऐसा है कि दुनिया भर में ये कहा जाता है कि भाई आप दुनिया में अगर आपको कार्बन एमिशन कम करना है तो आपको फॉसिल फ्यूल जो है वो कम उपयोग करना पड़ेगा। भारत ने जो अपने एनडीसी टारगेट दिए थे उसमें हमने कहा था कि हमारी जो ऊर्जा की कैपेसिटी है उसका 50% हम रिन्यूएबल एनर्जी से प्राप्त करेंगे, और रिन्यूएबल एनर्जी से हमने ये प्राप्त करने के लिए सोलर के क्षेत्र को हमने आगे बढ़ाने का काम किया। भारत ने सोलर के क्षेत्र में अपने 53% जो है ग्रोथ किया है। मैं जब G20 में केपटाउन में गया था तो UNFCCC के माध्यम से एक प्रेजेंटेशन किया गया था जिसमें उन्होंने कहा था कि पेरिस एग्रीमेंट के 10 साल बाद दुनिया में कहां पर नया और अच्छा नवाचार हुआ, और उसमें भारत की इस बात की प्रशंसा की गई कि भारत ने दुनिया को सोलर क्षेत्र में अपनी उपलब्धि से बताया है कि जिसको रिन्यूएबल एनर्जी या नवीनकरणीय ऊर्जा कहते हैं उसमें भारत ने अच्छा कार्य किया है। और अभी तो जो IRNA की जो रिपोर्ट आई है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी की, वो भी ये बताता है कि भारत दूसरे नंबर पे पहुंचा है। तो हम भी मानते हैं कि कार्बन एमिशन कम होना चाहिए, रिन्यूएबल के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए, और इसलिए जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया है जिसका अब तो हेडक्वार्टर भी गुड़गांव है। एक समय होता था कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के हेडक्वार्टर हमें दुनिया के दूसरे देशों में दिखते थे। 12 साल में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उपलब्धि हुई है तो इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन और उनके हेडक्वार्टर भी अब भारत में बनने लगे हैं, और रिन्यूएबल के क्षेत्र में भारत ने विशेष रूप से सोलर के क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 12 साल में एक अच्छे मुकाम को हासिल किया है।
1: अगले सवाल के लिए मैं आपसे कुछ आंकड़े शेयर करना चाहूंगी कि

0: इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक देश में फॉरेस्ट और ट्री कवर यानी कि वन क्षेत्र और वृक्षों का दायरा बढ़कर कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 25.17% हो गया है और पिछली रिपोर्ट की तुलना में इसमें लगभग 1425 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है और साथ ही फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक जो है उसमें भी 8,10,00,000 टन से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। बहुत बड़े बड़े आंकड़े हैं लेकिन अगर हम इसको समग्र रूप में देखें और अगर हम पर्यावरण की सुरक्षा और के रूप में देखें तो इन उपलब्धियों के पीछे आप कौन सी प्रमुख नीतियों और पहल की बात मानते हैं कि कौन सी पहल और उपलब्धियां रही हैं?
1: ऐसा है कि सतत विकास के साथ समग्र विकास भी होना चाहिए
0: जी।
1: और नेचर का ये नियम होता है कि जहाँ प्योरेस्ट नेचर होती है वहाँ पर जो अपेक्स प्रेडेटर है वो सर्वाइव करते हैं
0: जी।
1: नेचर जो है उसमें जैसे एक छोटा माइक्रो जो स्पीशीज है उससे लेकर और जो अपेक्स प्रेडेटर है तो इसमें 7 बिग कैट्स हैं। तो भारत ने पिछले 12 साल में दिखाया है कि हमारे टाइगर की संख्या में वृद्धि हुई है, लेपर्ड की संख्या में वृद्धि हुई है, स्नो लेपर्ड का एस्टिमेशन हम लोगों ने कराया है, लॉयन जो है पूरे अफ्रीका में कम हो रहे हैं, भारत में उसकी संख्या में वृद्धि हुई है, और एक स्पीशीज जो हमारे यहाँ से एक्सटिंक्ट हो गई थी चीता उसका भी हमने वापस से री इंट्रोडक्शन किया है। तो हमने ये जो फॉरेस्ट कवर बढ़ाया ये इस बात को दर्शाता है कि हमने अपने यहाँ ये अभियान चला करके वो नेचर के बैलेंस को बनाने का काम किया है। यही कारण है कि आप ये देखोगे कि 2014 के पहले कांग्रेस के समय में ये इको सेंसिटिव जोन का नोटिफिकेशन ही नहीं करते थे, पड़ा रहता था मामला। अभी अगर 2014 से और 2026 12 साल में देखेंगे तो उनकी संख्या बढ़कर 391 हो गई है, प्रोटेक्शन एरियाज की संख्या बढ़कर 509 हो गई है, जो टाइगर रिजर्व्स हैं उनकी संख्या 47 थी वो बढ़कर के 58 हो गई है, जो एलिफेंट रिजर्व हैं उनकी संख्या बढ़कर के 33 हो गई है, जो हमारी एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं चाहे एलिफेंट हो, टाइगर हो, लॉयन हो, डॉल्फिन हो, पहली बार डॉल्फिन का एस्टिमेशन किया गया, मोर देन 6500 डॉल्फिन का हमने एस्टिमेशन किया है, उसके साथ ही साथ घड़ियाल हो, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो, तो ये सारी एंडेंजर्ड स्पीशीज को बचाने का, इनके प्रोटेक्शन का, प्रिजर्वेशन का काम हम लोग कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ ही साथ जो हमारी लोकल ट्राइब्स हैं उनके जो राइट्स हैं उसके लिए भी हम पूरी तरीके से काम कर रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत पट्टों के वितरण का कार्य किया गया है। ये इस बात को पूरी तरीके से दर्शाने का काम करते हैं कि हम अपने इकोलॉजी के क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं।
0: आपने डॉल्फिन्स की बात की तो नमामि गंगे मिशन की बात करना जाहिर हो जाता है। तो जब नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी तो उसका मकसद था गंगा को स्वच्छ करना, लेकिन समय के साथ ये बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के एक बहुत बड़े और अहम मॉडल के रूप में उभरा है। हाल ही में अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में भी इसका मेंशन किया था। उन्होंने कहा कि नमामि गंगे मिशन के तहत देश की पहली डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस द्वारा एक गंगा डॉल्फिन के सफल बचाव किया गया और उन्होंने इसे आशा की किरण बताया और कहा कि गंगा डॉल्फिन की रक्षा गंगा के पूरे इकोसिस्टम की रक्षा है। तो नदी की स्वच्छता से लेकर उसके बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम के संरक्षण तक की इस यात्रा के बारे में आप क्या कहेंगे और नमामि गंगे मिशन की सफलता को आप किस तरह देखते हैं, कितनी इम्पोर्टेंट है ये?
1: देखिए, सरकार ने तो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट भी फाइल किया है कि जो गंगा का जो अपर एरिया है जहाँ ओरिजिनल गंगा बनने की शुरुआत होती है उनकी ट्रिब्यूटरी पे अब कोई फर्दर और कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। हम ये मानते हैं कि गंगा की सेंटिटी, गंगा के जल की शुद्धता, ये तो हमारा लक्ष्य रहा ही है और इसलिए नमामि गंगे मिशन को आगे बढ़ाने के लिए सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और प्रोजेक्ट डॉल्फिन को भी हम इसीलिए चला रहे हैं क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि धरती पे भी अपेक्स प्रेडेटर तभी रहता है जब बाकी जो माइक्रो से लेकर के और मैक्रो सब सारा जो सिस्टम नेचर का सुरक्षित होता है, सेम डॉल्फिन के बारे में भी है और इसलिए हमने डॉल्फिन मित्र बनाने का भी काम किया। सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो एक संस्थान है ICFR उसने अभी एक पिछले 3-4 साल से एक रिपोर्ट पे हम काम कर रहे हैं कि हमारे नदियों के किनारे जो पेड़ लगाने के विषय हैं उस पर उन्होंने एक पूरी DPR तैयार करी है और हम नदियों के किनारे भी वृक्षों के संरक्षण को लेकर के काम कर रहे हैं। मैं कुछ दिनों पहले जो पीलीभीत से ऊपर एक जगह है कतरनिया घाट, वहाँ पे सबसे अच्छी डॉल्फिन साइटिंग भी है और हमारे घड़ियाल के लिए भी मैं गया था, तो ये वाटर कंजर्वेशन के लिए

0: काम कर रहे हैं। और जो अमृत सरोवर तो प्रधानमंत्री जी के हृदय के बड़ा नज़दीक है। अगर आप एटलस भी देखेंगे तो जो छोटे सरोवर हैं उनकी संख्या में वृद्धि हुई है, लेकिन बड़े सरोवर भी, जो बड़ी झीलें भी हैं, उनके प्रति जागरूकता के लिए हमको रामसर साइट का दर्जा दिला रहे हैं।
1: बिल्कुल
0: और 2014 में जहां देश में 24 रामसर साइट्स थी, अब उनकी संख्या बढ़कर 100 हो गई।
1: मंत्री जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था एक पेड़ माँ के नाम अभियान, आपने भी बात की, और वो आज एक जन आंदोलन बन गया है, इसे भी हम सब जानते हैं। तो सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस अभियान के तहत 140 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए जा चुके हैं। बेशक ये संख्या बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हम इसे सिर्फ संख्या के नजरिए से ना देखें तो जन भागीदारी, एफॉरेस्टेशन और पर्यावरण जागरूकता के संदर्भ में इसके प्रभाव को आप कैसे देखते हैं?
0: मैं हमेशा अपने अधिकारियों को कहता हूँ कि देखिए, जो हरित क्षेत्र का विस्तार है, ये कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये पैशन का विषय है
1: जी
0: और ये नेचर के साथ आपके कंपैशन का विषय है। अगर आपके साथ नेचर के साथ अगर आपका भाव होगा तो आप लगाओगे। पेड़ लगाना ये फोटो खिंचाने के लिए नहीं होना चाहिए, पेड़ लगाना ये प्रकृति को बचाने के लिए होना चाहिए। और एक पेड़ माँ के नाम अभियान जब प्रधानमंत्री जी ने शुरू भी किया था, तो प्रधानमंत्री जी का एक संदेश था और जिसको हम लोगों तक पहुंचाते हैं कि हमारे पे दो लोगों का बहुत एहसान है, एक हमारी माँ का जिसने हमें जन्म दिया और दूसरा धरती माँ का जिसने हमारा भरण पोषण किया। और इसके प्रति कृतज्ञता अर्पित करने का यही तरीका है कि हम वहाँ पर एक पेड़ कम से कम माँ के नाम लगाएं। देखिए, आप बहुत बड़ी किसी भी बड़े ब्रांड की गाड़ी खरीद सकती हैं, लेकिन वो गाड़ी ऑक्सीजन नहीं दे सकती। आप 10 मंजिल का मकान बना सकते हैं, लेकिन वो चिड़िया के लिए एक दाना नहीं बना सकता
1: बिल्कुल
0: है ना, पक्षियों को छांव नहीं दे सकता। तो पेड़ तो नैसर्गिक रूप से प्रकृति का दिया हुआ उपहार होता है। और मैं कई बार ये भी कहता हूँ कि केवल पेड़ लगाना मतलब हॉर्टिकल्चर का विषय हो जाता है।
1: जी
0: जब हम वन की बात करते हैं, हम इकोलॉजी की बात करते हैं, तो पेड़ लगाना मतलब वुडलैंड तैयार करना। लेकिन जितना वुडलैंड का महत्व होता है, उतना ही वेटलैंड का महत्व होता है
1: बिल्कुल
0: पक्षियों के लिए,
1: जी
0: और उतना ही ग्रासलैंड का महत्व होता है। और ग्रासलैंड का जो हमारा एक बड़ा स्पीशीज था चीता, वो तो भारत से एक्सटिंक्ट हो गया था। तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने चीते के भी ट्रांसलोकेशन का कार्य किया है। तो एक पेड़ माँ का नाम अभियान प्रधानमंत्री जी का इस धरती की हरियाली से जुड़ने का अभियान है। और धरती की हरियाली वुडलैंड, ग्रासलैंड और वेटलैंड
1: जी
0: तीनों बायोडायवर्सिटी के समान रूप से संरक्षण में होगी, और हम तीनों के लिए कार्य कर रहे हैं।
1: भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, और अक्सर ऐसा माना जाता है कि विकास और पर्यावरण संरक्षण एक दूसरे के विपरीत हैं, दोनों एक साथ नहीं चल सकते हैं। ऐसे में जब हरित विकास भारत की स्ट्रैटेजी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन गया है, तब सरकार, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार, आर्थिक प्रगति, औद्योगिक विकास और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के बीच संतुलन कैसे सुनिश्चित कर रही है?
0: देखो, विकास तभी समृद्ध होता है जब नेचर समृद्ध होता है। मान लो आप पानी से बिजली बनाते हो,
1: जी
0: पानी नहीं होगा तो बिजली कहाँ से बनाओगे? आप कोयले से बिजली बनाते हो, कोयला ही नहीं होगा तो बिजली कहाँ से बनाओगे?
1: जी
0: दुनिया की कौन सी ऐसी दवाई है जिसका लास्ट सोर्स नेचर ना होता हो? आप फैक्ट्री में ब्रेड बना सकते हो, लेकिन गेहूं तो पैदा नहीं कर सकते हो। कोई ऐसी फैक्ट्री थोड़ी होती है कि जिसमें गेहूं बनता है। गेहूं से आटा बनता है, लेकिन वो तो नेचर से आता है।
1: बिल्कुल
0: तो हमारा फूड, हमारा एनर्जी रिसोर्स, हमारी औषधि, ये तो नेचर से आती है। तो नेचर सुरक्षित और संरक्षित होगी तो विकास भी होगा। आप एक बात बताइए
1: जी
0: कि जैसे आप सड़क बना रहे हैं या आप मकान बना रहे हैं, तो मकान में जो भी चीज़ लगा रहे हैं आप, दरवाजा है तो लकड़ी तो नेचर से आती है, ये कहाँ से आती है?
1: जी
0: तो विकास भी तभी होगा जब हम संसाधनों का बुद्धिमता तरीके से उपयोग करेंगे। सर्कुलर इकोनॉमी क्या है?
1: जी
0: कि कितना लंबे समय तक आप धरती को से खोद खोद कर केवल खनिज का उपयोग करोगे? कभी तो ऐसा समय आएगा कि इस खनिज का पुनर्उपयोग करने का काम आप करोगे। तो मेरा मानना है, जिसको आजकल कहते हैं नेचर बेस्ड सॉल्यूशन,
1: जी
0: नेचर बेस्ड सॉल्यूशन, नेचर बेस्ड लाइफ स्टाइल, और नेचर के साथ विकास करने का काम हम लोग करेंगे। और इसलिए इकोलॉजी

0: और इकोनॉमी ये एक दूसरे के विरोधी नहीं है, ये एक दूसरे के पूरक है।
1: जी, हम बात कर रहे थे शुरू में नेट जीरो एमिशंस की। तो जो भारत ने वर्ष 2070 तक कार्बन उत्सर्जन को शून्य तक लाने की यानी कि नेट जीरो एमिशंस के लक्ष्य सहित कई महत्वाकांक्षी क्लाइमेट गोल्स को निर्धारित किया है खुद के लिए, सो इस दिशा में अब तक कौन सी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल हुई हैं और आगे के क्या हमारे लक्ष्य हैं?
0: देखो, जो रिन्यूएबल एनर्जी में हमारी क्षमता है ये नेट जीरो के है
1: जी।
0: जो ग्रीन सिटीज की बात है ये नेट जीरो की है। जो मेट्रो का विस्तार है ये नेट जीरो के लिए है। जो ईवी का विस्तार है वो नेट जीरो के लिए है। जो ग्रीन हाइड्रोजन नए एनर्जी रिसोर्स को ढूंढ रहा है वो नेट जीरो के लिए है। जो बायोफ्यूल अलाइंस कर रहे हैं वो नेट जीरो के लिए है। जो सोलार की कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं वो नेट जीरो के लिए है। नेट जीरो का अर्थ है कि हम एक ऐसे अर्थव्यवस्था के मुकाम पे पहुंचे जो कार्बन एमिशन और कार्बन उत्सर्जन कम हो, हमारी जीवन शैली और हमारे विकास का आधार पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली हो। और इसलिए जैसा आपने बताया कि 1477 किलोमीटर वन क्षेत्र बड़ा है तो वो नेट जीरो के लिए है।
1: पर्यावरण लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सरकार अपनी तरफ से पूरा काम कर रही है, लेकिन इसके साथ ही जो हम जब पर्यावरण की बात करते हैं, उसकी सुरक्षा की बात करते हैं, तो उसमें इंडस्ट्री का, कॉरपोरेट जगत का कितना इम्पोर्टेंट आप एक रोल देखते हैं?
0: अभी हमने ग्रीन क्रेडिट फंड में कॉरपोरेट को लगाया है, उनके जो ESG है वो भी है। कॉरपोरेट जगत में बात होती है, भारत में कॉरपोरेट जगत में एक उत्साह का भाव बना है कि वो ग्रीन ट्रांजिशन की ओर जाएं, अपनी इंडस्ट्री को ज़्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाएं। और मैं उम्मीद करता हूं कि विकास ऐसा होना चाहिए जो लंबे समय तक चले और धरती को बचाने के लिए हो। इसलिए कई बार ये कहते हैं ना कि ये ग्रह हमें अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार में नहीं मिला है, अपने बच्चों से उधार में मिला है
1: जी।
0: तो ये हरा भरा ग्रह छोड़ के जाए
1: जी।
0: वरना एक दिन, जैसे आप ये कहते हैं ना कि मनुष्य ये सोचता है कि मंगल पे कभी जीवन था, तो ऐसा नहीं हो कि दूसरे ग्रह के लोग कहें कि पृथ्वी पे भी कभी जीवन था।
1: क्योंकि आपने बच्चों की बात की तो आखिरी सवाल मेरा आपसे यही है कि आम नागरिक और आज खासकर की जो देश के युवा हैं, जो देश का भविष्य है, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के इस अभियान में क्या योगदान दे सकते हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है?
0: पहला तो एक पेड़ माँ के नाम अभियान से जुड़े, और दूसरा प्रधानमंत्री जी ने मिशन लाइफ में जो आयाम दिए हैं, सेव फूड, सेव वाटर, सेव एनर्जी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, बैन ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक, हेल्दी लाइफ स्टाइल, ऐसे विषयों पर ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, इसको अपनी जीवन पद्धति पर अपनाएं। तो मिशन लाइफ को अपना जीवन का आधार बनाएं, एक पेड़ माँ के नाम लगाएं और ग्रीन टेक्नोलॉजी के विकास में अपना योगदान करें।
1: मंत्री जी, आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आए और पर्यावरण के क्षेत्र में पिछले 12 साल में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हुई उपलब्धियों के बारे में और लक्ष्यों के बारे में बातचीत की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आकाशवाणी में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ विशेष साक्षात्कार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर वक्त हो चुका है ठीक 11:39:17 और यह वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम गीत मेरे मनमीत का।

0: और गीत मेरे मनमीत की इस बेहद खूबसूरत महफिल में हम हाजिर हैं सुनहरे दौर के उन बेहद खूबसूरत नगमों के साथ जो आपके दिल के बेहद करीब है। हिंदी सिनेमा का स्वर्णिम युग यानी गोल्डन एरा आम तौर पर 1940 के दशक के अंत से 1960 के दशक के अंत तक माना जाता है। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि ये दौर 1965 तक का है। इस दौर में कहानी, संगीत, अभिनय, सामाजिक विषयों और सिनेमाई कला ने नई ऊंचाइयां छुई। इसे हिंदी फिल्म उद्योग का सबसे प्रभावशाली और यादगार समय माना जाता है। उसी दौर से हम आपके लिए चुनकर लाए हैं कुछ चुनिंदा नगमों को जो बेहद खूबसूरत, बहुत ही प्यारे हैं। उन्हीं नगमों में से एक नगमा सबसे पहले फिल्म चोरी चोरी से, और यह फिल्म आई थी 1956 में, जिसका निर्देशन किया था अनंत ठाकुर ने और जिसको लिखा था आगाजनी कश्मीरी ने। इस फिल्म में मुख्य किरदार निभाया नरगिश, राज कपूर, प्राण, गोपी, भगवान, डेविड मुकरी, राज मेहरा, जॉनी वॉकर, इंदिरा बंसल वगैरह ने। इसे फिल्म का एक बहुत ही प्यारा नगमा है जिसको लिखा है हसरत जयपुरी साहब ने और बेहद खूबसूरत संगीत से संवारा है शंकर जयकिशन साहब ने। तो आइए सुनते हैं इसी बेहद खूबसूरत फिल्म का ये बहुत ही प्यारा नगमा जिसे लिखा है दरअसल शैलेंद्र साहब ने। और बहुत
1: आकाशवाणी भवानी बटणवा